दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सब ग्रुप का डायमंड राइस सी किसान की उम्मीद खुशहाली
2: प्रोटीन फॉर्मूले 50।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं, ब्लैक ब्यूटी
2: सॉलिड मर्सी और सर्विस में है हाई क्वालिटी पीसी 5 साल
3: सही लाहे थी वतन में अजा भी तब्दीली मुमकिन है लिबनान समेत सभी महाजन से जंग के खात्मे जो ऐलान एक बुरी मुआदा अमरीकी नाकाबंदी जो खात्मो आपने हुर्मुज़ खोलने वाले बुरी मुआदे जो हिस्सों है ईरान के बरे वजीर अब्बास चिराग चीचो है तो इसराइल जड़ा दुश्मन ईरान अमरीका मुआदे के खिलाफ आन अमरीका जो धमकियों बंद थियण घुर्जन ईरान दबाव आडो न झुक असाजी तलवार हमेशा आबना हुर्मुज़ से लटकल रही लिबनान में जंग के खात्मे जो मतलब इसराइल के कब्जे कर इलाक में निकरण है ये बुरी मुआदो पर्यो कदम है जैसे उन अमल न कर तो एटमी प्रोग्राम से भी गाल नियो
4: अमरीका ईरान अमन मुआदे की शुरुआती मतन से इतफाक रेवतो वजीर आदम शहबाज शरीफ अमन मुआदे के मतन से अमरीका ईरान के मुतफिक थे तस्दीक कदे है अमन पे एतरो वेझो न हो जो हाँ है अमन मुआदे के नाकाम करण वारा साजिशी कदें भी कामयाब न थींदा

0: 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 37% से कम करके 29% करने की तजवीज है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 37% से कम करके 32% करने की तजवीज है। सरकार तबके पर आय सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला किया है।
1: नए माली साल के बजट में कुछ टैक्सेस में वाद आए, कुछ में घटताई सुपर टैक्स से दह में घटाए 8 सैकड़ो कर छो। सालानो 15 खां 50 करोड़ ताई आमदनी के 6 स्लैब से सुपर टैक्स खत्म कर 22 खां 32 लख सालानो कमाईदन इनकम टैक्स की शरह 23 में घटाए 20 सैकड़ो कई वही। 32 खां 41 लख आमदनी टैक्स की शरह 25 सैकड़ो करण की तजवीज। 41 खां 56 लख कमाईदड़ 29 सैकड़ो इनकम टैक्स भरीदा। 56 खां 70 लख सालाने आमदनी से 32 सैकड़ो इनकम टैक्स की तजवीज़।

जगह पोल मा सूबर के मजबूरी तौर ते 88 अरब 48 अरब रुपया देने की तजवीज। रुगो पंजाब के सीधी मुंतकली की बात में 44 अरब रुपया मिलना। सिंध के रुगो 22 अरब 70 अरब अड़ा करोड़ देने की तजवीज। केपी के 14 अरब 43 अरब 34 करोड़ 60 लख। बलोचिस्तान के 7 अरब 95 अरब 13 करोड़ 40 लख रुपया मिलना। बजट में विरसे जे पोल में रकम हलंदड़ साल की भेट में 6 अरब 46 अरब 78 करोड़ 80 लख रुपया घटाए।

0: नंढनि दुकानदारनि लाइ फिक्स्ड टैक्स सिस्टम मुताबिक़ सालानो 20 करोड़ रुपियनि ताईं विकिरो कंदड़ दुकानदारनि फिक्स्ड टैक्स सिस्टम में शामिल थींदा। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर खे ख़िताब कंदे चयो त फिक्स्ड टैक्स सिस्टम तहत नंढा दुकानदार टैक्स रिटर्न जमा कराइण वक़्तु घटि में घटि 25,000 रुपया जमा कराईंदा।
1: माली साल जे बजट में गाॾियूं वधीक महांगियूं थी पियूं। ॿाहिरां गाॾियुनि घुराइण ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जो फ़ैसिलो 2,000 खां 3,000 CC ताईं। SUVs गाॾियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाई वई। 3,000 CC खां वॾियुनि गाॾियुनि ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी में बाद 2 करोड़ खां महांगे इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जी तजवीज़ ॾिनी वई। इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल्स, EV रक्षाण ऐं EV पसंदि ते रियायती निज़ाम बरक़रार रहंदो।
0: वफ़ाक़ी हुकूमत में नज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी रक़म में 17% इज़ाफ़ो कंदे 838 अरब रुपया रखी छॾिया। कफ़ालत प्रोग्राम खे 1,20,00,000 ख़ानदाननि ताईं वधाइण जो फ़ैसिलो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर खे ख़िताब कंदे चयो त वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम लाइ 71 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि।
1: मिल्कियतनि जी मुंतक़िली ते लागू विद होल्डिंग टैक्स में घटिताई जी तजवीज़। फाइल लाइ मिल्कियत जी ख़रीदारी ते विद होल्डिंग टैक्स 2.5% मां घटाए 1.25% कयो वियो। फाइल लाइ मिल्कियत जी विकिरे ते बि विद होल्डिंग टैक्स 5.5% मां घटाए 2.75% करण जी तजवीज़।
0: वफ़ाक़ी हुकूमत परॾेह वेंदड़ अमीरनि खे वॾो रिलीफ ॾेई छॾियो। जहाज जे बिज़नेस क्लास में सफ़र करे परॾेह वेंदड़नि लाइ टैक्स में घटिताई। परॾेह में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करण ते लागू 5% विद होल्डिंग टैक्स 0.5% कयो वियो। गैर मुल्की असासनि ते कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़तमु करण जी तजवीज़।

0: वफ़ाक़ी काबीना ॾह माली साल जे बजट जी मंज़ूरी ॾिनी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त अलाह ताला जे फज़ल ऐं करम ऐं क़ौम जे दुआनि सां मुआशी मज़बूती हासिल कई। हाणे ख़ुशहाली जो वक़्तु शुरू थी चुको आहे। मुआशी इस्तक़ाम सबबि अॼु हुकूमत बजट में आवाम खे रिलीफ़ फ़राहम कयो। ॾुखियुनि हालतुनि में सबर जो मुज़ाहिरो करण ते पाकिस्तान जे हर शहरी जे थोरायतो आहियां। हाणोकी बजट में आवाम जी रिलीफ़ भलाई ऐं इहा पघारदार तबिके ते भार घटाइण लाइ क़दम खया विया आहिनि।
1: क़ौमी सलामती जी ज़रूरत लाइ सूबा वफ़ाक़ सां सहकार कंदा। सहकार कंहिं सूबे जो NFC शेयर घटाइण या 28 तरमीम आणण लाइ न हूंदो। ज़रूरतूं पूरियूं करण ताईं NFC जा हथ चुरान न कई वञे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुटे ज़रदारी जो पर्यावरणी पार्टी जे इजलास खे ख़िताब। बिलाल भुटे ज़रदारी चयो त सभ खां वॾो चैलेंज पाकिस्तान जी सिक्योरिटी जो हो। भारत खे शिकस्त हज़म न पई थिए तॾहिं हाणे जी ॻाल्हि करे रहियो आहे।
0: हुकूमत बजट اجلاس खां अॻु नाराज़ थियल पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुटो ज़रदारी खे परचाए वरितो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जी मुलाक़ात खां पोइ घर वज़ीर मोहसिन नक़वी बिलाल भुटो खे परचाए ऐवान में वठी आयो। गिलगित इलेक्शन ते ख़दशा ख़तम करण जी हाज़िरी। उन खां अॻु बिलाल बजट اجلاس में शिरकत न करण जो फ़ैसिलो कयो हो।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: वो तनख्वाहदार 22 से 36 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तब्दील है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 37% से कम करके 29% करने की तजवीज है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज है। सरकार तबके पर आय सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला किया है।
1: नए माली साल के बजट में कुछ टैक्सेस में वाद है, कुछ में घटताई। सुपर टैक्स 10 में घटाए 8 सैकड़ो कर छो, सालानो 15 खां 50 करोड़ ताई आमदनी के 6 स्लैब से सुपर टैक्स खत्म कर पो। 22 खां 32 लख सालानो कमाइंदड़ लाइ इनकम टैक्स की शरह 23 में घटाए 20 सैकड़ो कई वही। 32 लख 41 लख आमदनी से टैक्स की शरह 25% करण की तजवीज़। 41 खां 56 लख कमाइंदड़ 29% इनकम टैक्स भरीदा। 52 खां 70 लख सालानी आमदनी से 32% इनकम टैक्स की तजवीज़।

एनएफटी मां सिधियूं मुंतकिलियूं अखियूं खेली पंजाब खां टिन सूबनि खां वधीक रक़म मिलंदी। विर्थ जो की पोल मां सूबनि खे मजमूई तौर ते 88 ख़रब 48 अरब रुपया ॾियण जी तजवीज़। रुगो पंजाब खे सिधी मुंतकिली जी मद में 44 ख़रब रुपया मिलंदा। सिंध खे रुगो 22 ख़रब 7 अरब 18 करोड़ ॾियण जी तजवीज़। केपी खे 14 ख़रब 43 अरब 34 करोड़ 7 लख ऐं बलूचिस्तान खे 7 ख़रब 95 अरब 13 करोड़ 40 लख रुपया मिलंदा। बजट में विर्थ जोगी पोल जी रक़म हलंदड़ साल जी भेट में 6 ख़रब 46 अरब 7-8 करोड़ 80 लख रुपया घटि आहे।

शौक शराब ज्ञान चढ़ी मस्ती में त कलमा आखा के ही जुबान विचू मोहम्मद बूटा वेख यार दी सूरत सब सूरत विसर गयो कुरान विचू छोड़ी बात तसट तस्वीरू बताओ मेरे कुफर विच लग जावई सट तस्बी नू मता उम्र कुफर विच लग जावई सौ मणके नू क्यों फेरे दई मता ओ मणका घुस जावई हज पढ़ण दी

0: बड़ी वल रोवल खौफ तनु हिक रब दे रात ओडी हां डरी वल ए सब गालिया ए हां जे हां दे कर कन सुनी वल ए सच लईए तो मकसद मूल ललस रुगो मूजा विचित मरी वल
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन्हीं में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते 0327-9984-7063।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: चिकन चाक ओ मुखम मसवाक डू

بل میں تعین

तन जी कांगल कर खबर सब मड़ाया सोन में पखी तुझा पर ओ भूमि मथों घर।

ਗੁਰੂ ਮੀਆਂ।

हे हुसन दामल सब कोई जाने हुसन खास जहूर जात दा है अहमद नाम सदावे विच अरब सुना जा।

हाणे हैरत अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: लागू 5% विद होल्डिंग टैक्स बुड़ी डाही 5% कह गैर मुल्की असासन या कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़।

चारथदा में घर वजीर मोहसिन नकवी पारां फेडरल कांस्टेबल जी ट्रेनिंग सेंटर जो दौरो घर वजीर मोहसिन नकवी फोर्स जा प्रशन तैयार पेशेवर तरबियत जो जायजो वरतो जदीद तरबियत के मयार की वाखाण कई मोहसिन नकवी चो तो पढ़ी मेहमान के आर्मी मयार की सिक्योरिटी फराम कई वेंदी स्पेशल प्रोटेक्शन विंग के ट्रेनिंग से खास ध्यान दिनों पे वे

ईरान अमरीका खिलाफ़ जंग जो फातो आए मवाती यादाशनामे अजा तीन सही ना थे मतन में अब तब्दीली मुमकिन है। लबनान समेत सभी महाजन से जंग के खात्मे जो ऐलान एक अबूरी मुआदे तहत थो। अमरीकी नाकबंदी जो खात्मो है अपने हदमत खोल अबूरी मुआदे जो हिस्सों हैं। ईरान के परे वजीर अब्बास राक्षी शवायत इसराइल जड़ा दुश्मन ईरान या अमरीका मुआदे के खिलाफ आन अमरीका जो धमकियों बंद थे घुर्जन ईरान दबाव आर न चुक असि तलवार हमेशा अपने हुरमत से लटकल रही। लबनान में जंग के खात्मे जो मतलब इसराइल जो कब्जो कर इलाक में निकरण है अबूरी मुआदो पे कदम है जैसे उन अमल न कर पे तो एटमी प्रोग्राम से भी गाड़ी न थन्दियों।

खेबर परसा पीरसन दरिया में बुरी फौत फौती पीरसन राम कोली चे वाल जो चवण आए तो पीरसन दरिया के कपर ते पेट रखण सब दरिया में बुरी फौती पयो लाज जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले संगवाणी बरसा बाड़ी उरड़ी बगे फोर्थ रोड सुबह साध कोसो में सत साल बिस्मा लाशारी उरड़ी बगे फोर्थ गोठान चौणाते इलाके में केतरा ही बारड़ा उरड़ी में वरतल आहिनि सिहत खाते जूं टीमूं माणे बारनि जूं हयातियूं बचायूं वञनि।

0: ਆਇੰਗੜੀ ਖੇਰੋ ਮੇ ਮਾਟਨ ਵਟ ਕੁਮਨ ਲਾਲ ਬਾਲਡੋ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੇ ਕਰੀਬੁਰੀ ਫੋਤ ਉਸਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸੀ ਨੌ ਸਾਲ ਨਵੀਦ ਸ਼ੇਖ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੇ ਕਰੀਬੁਰੀ ਫੋਤ ਹੀ ਪਏ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਾਕਸਨ ਹਵਾਲੇ
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करयो। जी हां, हाने अवाजे पंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर मशोरे रबते 0327-99-84।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।
1: ये गाना उनके लिए जो करते हैं जोर, उनकी लाइफ जीरो और मुझे कहते हैं और मेरी मॉडल जैसी चाल या मेकअप वाले गाल, गालों पे डिम

Hasta luego.

आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

सिक्योरिटी फोर्सेस जो उत्तर वजीरस्तान में ऑपरेशन वधीक एकवीह दहशतगर्द मारिजी विया। आईएसपीआर मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेस मुझे इतलात मीरान शाह ऑपरेशन कया। बहत्तर कलाकन में चार अहम दहशतगर्द समेत एकवीह दहशतगर्द मारिजी विया। इलाके में इम्कानी दहशतगर्दन के खात्मे लाए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहो। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब कार्रवाई से सिक्योरिटी फोर्सेस की वाखाणा।

ईरान अमेरिका खिलाफ जंग जो फातिहा है मफामती यादाश्त में अजा तई सही ना थी मतन में अजा तब्दीली मुमकिन है। लबनान समेत सभी महाजन से जंग के खात्मे जो ऐलान एक अबूरी मुआदे तहत अमरीकी नाकाबंदी जो खात्मो अमन हुरमस करण अबूरी मुआदे जो हिस्सो हैं। ईरान के परे वजीर अब्बास अराग़ची शवाहद इसराइल जड़ा दुश्मन ईरान अमरीका मुआदे के खिलाफ हैं। अमरीका जो धमकियों बंद थे घुर्जन ईरान दबाव आदो न झुकंद असारी तलवार हमेशा अपने हुरमत से लटकल रही। लबनान में जंग के खात्मे जो मतलब इसराइल जो कब्जो कल इलाकों में निकरण है। अबूरी मुआदो पे कदम है जैसे उन अमल न किया वो तो एटवी प्रोग्राम से भी गाल न थन्दियों।

अमरीका ईरान अमन मुआदे के शुरुआती मतन से इतफाक करे वरतो। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमन मुआदे के मतन से अमरीका ईरान के मुतब की तस्दीक कदे है तो अमन पेरो एतरो वेझो न हो जो हाँ है। अमन मुआदे के नाकाम करा साजिश कामयाब ना

धरमपुर में धाड़ेलन जो केटीएन न्यूज रिपोर्टर के घर से हमलो संदस सोट कतल धाड़ेलन केटीएन न्यूज रिपोर्टर अली जाफरी के घर से हमलो करे सन सोट शाह मुराद जाफरी के कतल कर छो फायरिंग में रिजब अली जाफरी जख्मी इतला बावजूद पुलिस वाके बारे अंदर न पहुंची।

घर में बेज़ुबान जानवरन सां ज़ुल्मनि में घरता ई न थी कलोई में कुआड़ियुनि जा वार करे ज़ख़्मी करे छॾियो घोट भातू मोरामियन जदल जवाब कुआड़ियुनि जा वार करे बेज़ुबान डाची जूं जंगू भरी छॾियूं डाची जे मालिक अशरफ नेड़ियो पारां जवाब तरनि जी गिरफ़्तारीअ जो मुतालबो।

0: खैबर भरसा पीरसन दरिया में बुरी फोत फोती पीरसन रामो कोली जो वाल जो चवण आए तो पीरसन दरिया के कपर से तिरकण साहब दरिया में बुरी फोती पो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले तंगवाड़ी भरसा बाड़ी उड़ी वगे फोत गोट सुबह साधे कोसो में सत सारा बिस्मला शाही उड़ी वगे फोत गोठान जो चवण आए इलाके में कितरी बाड़ा उड़ी में वरतल सेहत खाते जो टीमू उमाणे बाड़न जो हयातियों बचाई वन ऐं गढ़ी खेरो में माइटनि वटि घुमण लाइ आयल बारड़ो गंदे नाले में किरी ॿुॾी फोत ओस्ता मोहम्मद वासी नव साला नवीद शेख गंदे नाले में किरी ॿुॾी फोत थी वियो लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हा हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज़ मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघि ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देरि सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763
3: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

महमूद खान क़ादर चमन शाह जो मुतालबो न कयो हो। कानून लागू इदारा मुल्क जे अमन लाइ ॾींहुं राति कम कनि पिया। सदन ख़िदमतुनि ऐं क़ुर्बानीनि जो एतराफ़ ऐं एतराम थियणु घुरिजे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन वधीक 21 दहशतगर्द मारिजी विया। 3 ॾींहनि दौरान फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु वधी 48 थी वियो। ISPR मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस गुजे इतला ते मीरान शाह ऐं भरपासे में ऑपरेशन कया, जंहिं दौरान वधीक 21 दहशतगर्द मारिजी विया। 72 कलाकनि दौरान ऑपरेशन जे नतीजे में दहशतगर्दी 4 अहम कमांडर समेत 48 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। इलाइक़े में क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी रहंदो। सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सिस जी वाखाण। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं कार्रवायूं जारी रखण वारे अज़म जो वरझाओ। ईरान अमरीका सां शुरूआती मुआहिदे ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी पटेई वज़ीर अब्बास सिराग़ची चयो आहे त अमरीका सां ॾींहं ॿिनि में मुआहिदो थी सघे थो। मुआहिदे ते सयूं डिजिटली कयूं वेंदियूं। असांजी तलवार हमेशह जीअं अमन हुरमत से लटकंदी रहंदी। ॿिनि सूबनि ते ॿधल मफ़ामती यादाश्त आहे, जंहिं ते ॿिनि महीननि ताईं ॻाल्हियूं थींदियूं रहियूं आहिनि। अमन हुरमत जो इंतिज़ाम माज़ी खां मुख़्तलिफ़ हूंदो ऐं जंहिं बाबति ईरान जो फ़ैसिलो हतमी आहे।

धर्मपुर में केटीएन न्यूज के रिपोर्टर के घर धाड़िलन जो हमलो सनसोट कतल धाड़िलन केटीएन न्यूज के रिपोर्टर अली जाफरी के घर हमलों कर सनसोट शाह मुराद जाफरी के कतल कर फायरिंग मिर्जब अली जाफरी जख्मी थी तला बावजूद पुलिस वाकई वारे हंधि न पहुती।

कराची में रोल कुतन जो राज कुतन जो लाडा वधिक एक शख्स रबी सबा फोर्थ शहर में रबी सबा फोर्थ इन्होंने जो अंगवधिक चौदह थी वो जना अस्पताल इंतजामिया में जो 45 साल के शख्स के कुतन लाड़े हो जै वैक्सीन न कराई हुई अज रबी सबा फोर्थ थी शहर में रबी सबा फोर्थ इन जो अंगवधिक चौदह थी वो है में बेजुबान जानवरों से जुर्मन में घटताई न थी कलोई में जवाब तरन डाची के कुआरन जा वार कर जख्मी कर छो घोट बांधो मोरा में अंड तर जवाब तरन कुआरन जा वार कर बेजुबान डाची जो जंगू मनी छो डाची के मालिक अशरफ डेड़ो पारा जवाब तरन गिरफ्तारी जो मुतालबो

0: गंगवाणी बरसा बाड़ी उड़ी बगे फोत गोट सुबह सात कोसो में सत साल बिस्मल आशारी उड़ी बगे फोत थी वही गोठान पारा डॉक्टर जो टीमों मोकलण जो मुतालबो आगड़ी खेरो में माटन वट घुम आयल बाड़ो गंदे नाले में किरी बुढ़ी फोत ओस्ता मोहम्मद वासी नव साल नवीद शेख गंदे नाले में किरी बुढ़ी फोत थी पाओ
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हा हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं पर जुमो 12 वॻे ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशहूरु ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज

0: GAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
1: स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती अब आप लोगों के हाथों में है। तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्या ऐसे फायदे हैं जो कि आप लोगों को मिलने वाले हैं, बिल्कुल जनाब सब कुछ बताया जाएगा, तफसील के साथ साथ बताया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद भी कहते हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी भी समाते हैं, तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल सही, इस प्यारे से प्रोग्राम में आप लोगों को खुश आमदीद, और इसी के साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल फेंट एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर जो आरजे एंड योर डीजे सिद्रामस का नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जितने भी प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोगों को जनाब वेलकम करने के साथ जरा अपने आप हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, हालत कैसे है आपकी हालत? उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। चुनाव फाइनली हमने यहाँ पर एंट्रियां मारी लिया। तो पता है ना कि जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं। तो

की क्या बात है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सीन आता आपने एंजॉय कर रही है। साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड द स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड द स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। और जनाब आपका प्रोग्राम है तो आपका होना प्रोग्राम में बहुत ज्यादा लाजमी होता है। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में जनाब जरा टॉपिक की जाने बात है, तो आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है वो आप लोगों को बताते हैं। तो आज मैं आप लोगों से जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे बताएं कि बहुत से लोगों की ये आदत होती ना कि वो खुद से बातें करते हैं और कुछ लोग तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब जो ना उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं अपने साथ, यानी कि उन्हें खुद समझ नहीं आती कि ये जो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ ये क्या बातें कर रहा हूँ। तो कई मरतबा हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम खुद से बातें कर रहे हैं क्या ये सही होता है या नहीं। लेकिन आज आप मुझे ये बताएंगे कि आप जो है क्या खुद से बातें करते हैं, आप वो हैं जो खुद से बातें करते हैं, मुझे बताइए जल्दी से। अगर आप हमारे साथ साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRG सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज, और जिए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए और वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो की बिल्कुल लाइव पोस्ट मिलेगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। आप तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करते जाइए दोस्तों के साथ और दोस्तों को जरा मेंशन करते जाइए। सबको पता चलना चाहिए कि मार्केट में कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जिनका आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, जाहिर सी बात है। तो आप भी जो है ना वो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद जो है ना वो

इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते हैं तो वक्त से पहले ही आप बूढ़े हो जाएंगे। तो ऐसा मत किया करिए अपने साथ जुल्म, ये भाई सरासर जुल्म है खुद के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, खूबसूरती को जो है ना वो वैल्यू दिया करें, और अपने आप को जो है ना हमेशा आगे रखा करें, और अपने चेहरे का खास ख्याल रखा करें। और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इनका क्या तरीकेकार है और कौन से प्रोडक्ट है, ये सारी बातें आप लोगों को इस प्रोग्राम में पता चलती हैं। तो आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, प्रोग्राम में फन होता है, बातें होती हैं, गाने होते हैं, मजे करते हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिए और मुझे बताएं कि क्या आप भी खुद से बातें करते हैं क्या आप भी वो हैं जो खुद से बातें करते हैं, मुझे बताइए जल्दी से। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मसरूर अहमद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कराची से मसरूर अहमद कहते हैं आरजे मुस्कान जी फायजा का सॉन्ग सुनाइएगा। ओके जी, मैं सुनाने की कोशिश करूंगी। आदिल हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और कहते हैं बेहतरीन पलांद चुप करे अगते वधण पाण के बेहतर बनाएण आई सब कुछ अलाते छे ॾियण मुनाफ़िक लाइ मौत बराबर आहे। बिल्कुल तमाम सही चयो आहे। उनखां अलावा हे जी फिरोज अली बिरोही हमारे साथ हेलो कहते सो गुड शो, थैंक यू। वफा मीर मुनवर हमारे साथ है, कहते हाय सिद्राबाद जी, हेलो वफा मीर मुनवर भाई। और ये हमारे साथ है गुड गुड गुड गुड, वालेकुम अस्सलाम गुड गुड, कैसा नाम है भाई। अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और जाहिद चांडी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। अदी कीअं आयो? अदी तव्हां जी सब मज़े में आता, ॿुधाए कीअं आयो? और अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, कहते हैं अच्छा प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, बहुत शुक्रिया जी, बस प्रोग्राम आप लोगों का अपना है, आपकी ये मोहब्बतें हैं, और बस आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। और जाकिर हुसैन कोरी हमारे साथ हैं, जाकिर हुसैन कोरी भाई वालेकुम अस्सलाम। और हैं जी मौलाई मुजाहिद बोजदार थूप चूसल से, मौलाई मुजाहिद बोजदार वालेकुम अस्सलाम। ओके जी मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? आपने दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। मीर बेवस हमारे साथ हैं, हेलो हाय, योर शो इज अमेजिंग इन वॉइस स्वीट, थैंक यू। भक्त अली सियाल हमारे साथ हैं, भक्त भाई आपको भी वेलकम करते हैं। किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा, खुश आयो? हाँ हाँ बिल्कुल, प्री पाण आयो आहे पंध करे गर्मी में अच्छा कहते हैं किशोर भाई टॉपिक मेरा सबसे अच्छा और बेस्ट फ्रेंड मैं खुद हूँ, सबसे पहले मैं खुद से पूछता हूँ, बातें भी करता हूँ, क्या सही है क्या गलत, ये अच्छी बात है, खुद से बातें करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये जो आपके अंदर इंसान है ना ये क्या चाहता है, और कौन सी बातें ऐसी हैं जो खुद से करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ये आज जो है ना पूरे प्रोग्राम में बातें हम करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों को बताया जाए। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको नंबर बताती हूँ, पूरे प्रोग्राम में नंबर बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, और आप उस नंबर के ऊपर रابطہ करिए, और नंबर के ऊपर रابطہ करने के बाद जो है ना आप लोगों ने बता सकें कि आप कहां से प्रोग्राम सुनते हैं, किस एरिया में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है ताकि वो अवेलेबल करा सके। तो आप बस इस नंबर के ऊपर रابطہ किया करें, नंबर है जनाब 03-15-799-05। ओके जनाब, सो नंबर है 03-15-799-0595, जल्दी से डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में भी अवेलेबल हो जाए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप लगाएं और खूबसूरत हो जाएं, ठीक हो गया। और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद, कहते हैं ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। उसके अलावा जनाब यहाँ पर टाइम हुआ जाता है कि हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का है। और आप मुझे बताएं कि क्या आप भी खुद से बातें करते हैं, बताएं तो जरा, पता तो चले और मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते जा रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं।

0: कीजिए FM 88
1: सिंध की आवाज। अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: Japan. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0387-84-763
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: GA FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

आबाद है, बहुत ही प्यारा सा गाना आप एंजॉय करें, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आके सिद्धराव के साथ मौजूद मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और जनाब प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाते जा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ आप लोगों से ना सवाल पूछा है, सवाल ये पूछा है कि आप मुझे बताएंगे कि आप भी खुद से बातें करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो खुद से बातें करते हैं, और जो लोग खुद से बातें करते हैं वो क्या, मैंने देखा कि आप लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं उसमें किसी ने लिखा कि वो जहनी मरीज होते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, ये एक ऐसा फैक्ट है जो मैं आगे जाकर आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग खुद से बातें करते हैं तो क्या वो वाकई ज़हनी मरीज होते हैं या फिर कुछ और ही वजह होती है। ये जरा रुको, जरा सबर करो वाला सीन बनाते हैं और आप मुझे बताएंगे कि आप भी खुद से बातें करते हैं नहीं, और साथ ही साथ क्या आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर नहीं, आपने मुझे ये भी बताना है। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स आते हैं ये भी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये आप दोनों प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे हैं और हमेशा के लिए खूबसूरत होते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई केमिकल नहीं, बहुत लाइट वेटेड फार्मूले के साथ तैयार किया गया है जनाब इन प्रोडक्ट्स को, और आप लोगों की स्किन के हिसाब से ही तैयार किए गए हैं प्रोडक्ट्स। तो आप इस्तेमाल करके देखिए और अपने एरिया में अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03157990595। ओके जी, पोस्ट को भी लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों के साथ, जो है ना हमारी पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और जनाब किस प्रोडक्ट्स के तावन से आप लोगों तक प्रोग्राम पहुँचाया जा रहा है। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर, वालेकुम अस्सलाम, कहते बाजी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम नाइस है, सॉन्ग सुनाए कोई भी, चले जी बिल्कुल कोई भी गाना आपको सुनाते, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद। और उसके अलावा हमारे साथ हैं आरजे सिद्रा, आपका 2 घंटे वाला शो हमारे तमाम गमों दर्दों और तकलीफों और परेशानियों को मिटा देता है। लाड़कना से इमरान अली बिरोही भाई, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, ऐसे मैसेजेस देखती हूँ तो मुझे एनर्जी मिल जाती है मैं जो यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये किसी के काम आ रहा है, सो बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतें हैं। और गोश मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू कहते तमाजो शोवरी नाइस आई सलाम तमा के, वालेकुम असलम प्यारा भा तमा के। और इरम कहती है मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ओके जी, सोने लाइ ताड़ियूं थी वन, सोने लाइ ताड़ियूं वजायो बाबा, छो तो सोनो हाने सोनो थी वो है, सोनो सोनो छो थो है, छो तो सोनो जो इस्तेमाल करें तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सो तुम भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाए तो भी सोना सोना थी वनो। और ये हमारे साथ मौजूद है जनाब, अस्सलाम वालेकुम आरजे डियर सिद्रा, ए बी रिंद फ्रॉम नवाबशाह, मैं खुद से तो बातें नहीं करता लेकिन नींद में रात को बोलने की बीमारी है और इस बीमारी की वजह से मुझे सुबह का चाय और नाश्ता होटल पे करना पड़ता है। क्या मतलब, आप घर वालों को कुछ उल्टा सीधा बोल देते चलिए हाँ, ये जो बीमारी है ये कह सकते हैं कि बहुत जो है ना ये अजीब सी बीमारी है। और ये हमारे साथ हैं कौसर निसा, तेरी जन्नत अच्छा, ये पता नहीं क्या लिखा है तुमने, मैं ठीक देखती हूँ मुझे मिल जाएगा ये गाना तो आपके लिए लगा देंगे, ठीक है। और ये हमारे साथ मौजूद है सलाम सिद्रा मुस्कान, केड़ा हाल है तवाजा खुश आयो अदी, ईद का पो यको अमाजो शो सक्रेंट FM में नशर न थियो, अज हले पयो, वडे शौक सा बुधू पया तवहां जो प्रोग्राम, ॾाढो इंतजार हुयो, सॉन्ग जरूर प्ले कजो, सजादुल्ला जमाली, अली हैदर जमाली, अलीगुल जमाली, विलेज रईस मोहम्मद हसन जमाली और शफी आबाद नवाब शाह, प्लीज प्ले सरमन सिंधी, तो सवार नीह दुखियो सिद्रा, अच्छा चलें ठीक है, गानो चयो आए सो मोहब्बतूं प्यारे भांजो हलाईंदासी गानो तवांजे लाइ। और ये कहते हैं इमरान भाई टॉपिक बाजी, हम ख्वाब में बात करते हैं अपने आप से, ख्वाब में बात करते हैं ये कैसे, देखें किस तरह के लोग हमारी दुनिया में पाए जाते हैं वो तो हमें तभी पता चलता है जब मैं आप लोगों से थोड़ी अजीबोगरीब से सवाल पूछ लेती हूँ, समझ रहे
चलिए आप मुझे बताएं जल्दी जल्दी से. मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम जिक्र करें तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स जिनके बारे में आप जाने तो ये आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छी बात होती है, क्योंकि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं. और हर तरह से मुराद यही कि भाई अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को निराश नहीं करेंगे. आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट लेकर हाजिर हो चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को फेयरनेस क्रीम मिल रही है, नाइट क्रीम मिल रही है, एक्नी ट्यूब मिल रहा है, सोप मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, लोशन मिल रहा है, हेयर रिमूवल साशी मिल रहा है, और जो ना वो लोशंस भी मिल रहे हैं. तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स वालों ने. और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जो है ना अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि जो लोग अक्सर ये मुझे कहते हैं कि असा रही प्रोडक्ट ना यूं लगाईंदा जिको असा लगाईंदा वो तो आहे ही न बाजी तां वट, तो असा वट हाने सब प्रोडक्ट अव तव्हांखे कोई भी बहानो न बणाए ॾींदासीं. ऐं तव्हांखे बिल्कुलु चवंदासीं त बाबा अगरि तव्हांजे लाइ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि त तव्हां उन्हनि मां फ़ाइदो हासिल कयो. और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए अगर व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम की बात की जाए तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है. आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों की स्किन को फ्रेश रखती है, फेयर बनाती है, आपके चेहरे पर जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर एवोकाडो मौजूद है, मिल्क

के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। तो अगर आप व्हाइटिश का फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम लगाइए, और साथ साथ अगर आप कोई अच्छी सी फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं तो भाई मेरे ख्याल में आप लोगों ने इतनी सारी फेयरनेस क्रीमें इस्तेमाल करी होगी, ट्राई करके देखी होगी, लेकिन जब आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि भाई सारी चीजें इसकी आगे फेल हैं, सारी चीजें इसकी आगे जीरो है, क्योंकि हमारा हीरो तो व्हाइट एज लवली क्रीम है। तो बिल्कुल जी व्हाइट एज लवली क्रीम आप इस्तेमाल करके देखिए, जो कि 30 विटामिंस के कैप्सूल के साथ तैयार की गई है, और इसके अंदर हर एक विटामिन मौजूद है, और इसी के साथ साथ सनस्क्रीन भी ऐड की गई है। और सनस्क्रीन ऐड करने का मकसद रीजन ये था कि आप लोगों की स्किन को ना सिर्फ खूबसूरती देंगे बल्कि आपकी स्किन को हम प्रोटेक्ट भी करेंगे। बिल्कुल जी, ये जो आप काम करते हैं सूरज, ये जो खतरनाक से किरणें होती हैं आपकी स्किन के ऊपर आती हैं, आपकी स्किन डल हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उन चीजों से आपको बचाने के लिए व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ना ये आ गई है मार्केट में। तो आप लोगों ने बस इस्तेमाल करनी है, और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है, आप बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कयो, उखराड़ा मायू मर्द हर कोई लगाए व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ना वह तवां जला सफा भली क्रीम अथव। सो तवां सब लगाए जो ना अलावा जेके मानू एकनी की वजह से परेशान आए, अगर आपके चेहरे पर भी एकनी दाने बहुत ज्यादा आ चुके हैं, दाने जाते नहीं है और आप परेशान हो चुके हैं, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब आपके लिए मौजूद है। अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए, आपके चेहरे के दाने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे के दानों के साथ साथ आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पर कोई जलने का निशान हो, कोई कटने का निशान हो, कोई बहुत पुराना जिद्दी निशान हो जो कि बचपन से आप लोगों के साथ मौजूद है, ये तमाम निशानात खत्म हो जाते हैं जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं, इनको इस्तेमाल करने के तरीकेकार भी आप लोगों को बताती चलूं कि जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब लगाते हैं तो इसको आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सोने से पहले इस्तेमाल कीजिएगा, और इस्तेमाल करने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा, चाहे आप सोप इस्तेमाल करें व्हाइट एज वालों या फिर फेस वॉश इस्तेमाल करें, अच्छे से अपना जो चेहरा है ना वो क्लीन कीजिए, वॉश कीजिए, अच्छे से अपने हाथों को क्लीन कीजिए, उसके बाद जहां जहां पर आपके एक्नी है, निशानात है, या फिर जो आप चीजें रिमूव करना चाहते हैं वहां पर आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप सुकून से सो जाइए, काम तो यही करेगा, आपने तो सिर्फ रेस्ट करना है, और उसके बाद सुबह उठकर आपने दोबारा से फेस वॉश कर लेना है, ठीक हो गया। और अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाना चाहते हैं तो इसको आप दिन में रात में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फेयरनेस क्रीम है तो इसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगाने से पहले फेस वॉश लाजमी कीजिएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। और अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। ओके जी, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम रात के टाइम इस्तेमाल की जाएगी क्योंकि ये एक नाइट क्रीम है, लगाने से पहले फेस वॉश लाजमी कीजिएगा, और ना मिलने की सूरत में आपने डायल करना है 03-15-799-0595, जल्दी से ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो सके व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना दम है जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। इस्तेमाल करते रहिए खूबसूरती को, वेलकम बोलिए, क्योंकि अब आपकी खूबसूरती आपके हाथों में है।

यो भी हुआ कोई, चले मैं देखती हूँ, मिल गया तो लगाते। अनवर भाई कहती है दी अंब खाओ। अंब खाओ बाबा, खाओ खाओ। हजार भाई कहते और टॉपिक ये हम करते हैं खुद से बातें, पर सोचते हैं खुद के लिए। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है, जो लोग खुद के लिए सोचते हैं वही शायद खुद से बातें करते हैं। दर्द दिल कहती हाँ सच में आ गई, हाँ जी देखो। और बेवस है मीर बेवस कहते सदरा सुनो। अच्छा गाना बोला है आपने, सही सही सही, चले मैं देखती हूँ ये गाना आपका लगाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग हमारे साथ मौजूद है पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, और मुझे बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक सोच रहे हैं कि हम व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर अभी तक आप नहीं कर चुके, यानी कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, तो भाई जान आप जल्दी कीजिए, कहीं देर हो गई ना तो फिर आप सोचते रह जाएंगे। आई सोची ना जेके माण्हू घणो उन्हनि जे आज क्या ना उन्हनि जे चेहरे ते बि झुरियूं अची वेंदियूं आहिनि। माने थी चाहे तव्हांजे चेहरे ते झुरियूं अची वञनि, ऐं तव्हां सोणा सोणा रहो, हमेशा यंग रहो, खूबसूरत रहो, तव्हांजी स्किन ग्लो कंदी रहे, छो त इहो सभु तव्हां डिज़र्व कयो था। तव्हां इस्तेमालु कयो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

अच्छा किशोर भाई ते लॻी थो ओचरी वारो क्लिप ॾिठो न क्लिप छा मूं त मतिलब ही वायरल थियण खां पहिरियां सॼो इंटरव्यू ॾिठो ओ प्लीज ओजरी खैर सुठी शइ हूंदी आहे पहिरियां न खाईंदी हुयमि पर हाणे खाईंदी आहियां छो त अॻे असां नंढपण में कुझु चीज़ूं न खाईंदा हुआसीं वरी थोरा वॾा थींदा आहिनि त वरी उहे चीज़ूं असां खाईंदा हुआसीं मां हाणे हुन फेज़ में हलां पई त जेके चीज़ूं अवल न खाईंदी हुअसि हाणे उहे सभु खावां थी दर्द दिल खे थी टॉपिक चवंदा हा यस करती हूं मैं खुद से बातें अच्छी बात है जी किया करे

अच्छा इमरान अली बिरोही भाई क्या कहते हैं कि बाजी पांचन जा डिनला जख्म एतरा तो गहरा होता साबित थी उन चीज सो खैर पांजो ख्याल रखो पांजी खूबसूरती जो ख्याल रखो पान में मगन रहो ई पान जी लाए तमा वठी अचो वाइटिश प्यूरी प्रोडक्ट्स की दवा इस्तेमाल करे सोना सोना थी वनो अच्छा यूनिस खोड़ो भाई हमारे साथ मौजूद है वेलकम करते हैं आपको टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज़ पे की जानिब जाएंगे उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं हमारे साथ मौजूद रहिए सुनती रहिए और एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आते ही और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जा रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं

0: तंगेज़ जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: Okay, so calling number 0332-1322 and 88. Next call. This is the KRS Sagar Majuda. Hello, assalamu alaikum.
1: Walaikum salam.
0: Mulal Salamadat, KRS Sagar Majuda.
1: Vasa bhai,
0: ji call lagiya. Vasa bhai, kushayo. अलहमदिल्ला प्रोग्राम तो वासा भाई बुद्धे पे टॉपिक थी छा चंदू वासा भाई ताजो लफ्ज समझ में आया तो हाने बुधायो
1: बिल्कुल आज मुझे के पांच खाजा ना जाए ने
0: अच्छा
1: अरे ये यहां बेवश या दर्बना मार हो जाए
0: दर्बना वो छा हूं दोआ
1: अरे को पांच खाना दलन जाए तो ये मैं संदेह हो जाए
0: दर्बना पहिरों दफ़ो इहो लफ़्ज़ ॿुधांदी तॾहिं मूंखे समुझ में ॻाल्हि न आई मूंखे ॿुधायो कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो था दर्बना भा छो इस्तेमालु न कया आहिनि चलो तव्हांजे ॻोठ में मिलंदा कोन चलो रतू तिरियूं वञो त उतां वठी अचो सही आहे उते तव्हांखे मिली वेंदा चलो थैंक यू वासा भाई हमारे साथ मौजूद है मैंने जिंदगी में पहली बार लव सुना दर्बना अब इसका मतलब अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइएगा और साथ साथ आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88 ओके जी सो नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: के रस सगड़ा अच्छा मूंखे ॿुधायो त तव्हां जेके ॿुधायां पई प्रोडक्ट जिन जे बारे में त उन्हनि खे इस्तेमालु कयो या सिर्फ़ ॿुधो था प्रोग्राम मिलन कोन था असल मतलब वजह इहा आहे त मिलन कोन था चलो तव्हां अवेलेबल करायो न जेको नंबर ॿुधाईंदी आहे प्रोग्राम में उनखे कॉल करे वठो छा ॿुधण में वाकई उहे बंदि करे छॾियो चङो यादि ॾियारायो हा सही सही सही मोहबतूं आहिनि भाउनि जूं कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा जी जी ओके ओके थैंक यू सो मच प्रोग्राम ॿुधो पिया ओके जी कॉलिंग नंबर 0332-1322-88 जिते जिते अञा ताईं ही प्रोडक्ट अवेलेबल न आहिनि छा चाहे वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि तव्हां नंबर डायल कंदा नंबर आहे 0315-799-0595 ही नंबर तव्हां लास्ट में डायल कजो तव्हांजे एरिया में बि अवेलेबल थी वञनि प्रोडक्ट ठीकु आहे ओके जी सो कॉल अगरि मता थी सघे थो मुंहिंजो हथु लॻी वियो हुजे त असां ही वारी कॉल वठूं था ॾिसूं केरु कॉलर असां सां गॾु मौजूदु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम केरु असां सां गॾु
2: आहे लखमीर मोरे खां
0: मोरे खां कॉल कई आहे लखमीर भाउ छा हाल ख़ुशि आहियो अलहमदिल्ला ठीकु ठाक प्रोग्राम ॿुधो पिया वाह वाह वाइट एश ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कई अथव
2: जी बिल्कुल कई आहे असांखे हुन ॾींहुं तव्हां कलाम कोन ॿुधायो तव्हांखे चयोसीं तव्हांखे प्रोग्राम में ट्राए कंदासीं
0: कहिड़ो कलाम हुयो ॿुधायो अॼु हलाईंदासीं चलो हलायूं था हिन गाने खे कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा तव्हां किरी माण्हू था न हिन करे गानो हलायां थी न त न हलायां मां हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे अदा खुश आयो हाँ वाकई वाकई सही था चो मुख्य बुधा प्रोग्राम बुधो पे अस
1: बिल्कुल अजी बुधा तो पहरों दफो तांगे जी बुधो पहरों दफो ना तांगा
0: पहरों दफो
1: मां बाका से
0: अच्छा
1: बडाडो पो जी मां के बड़ा स्ट्राइक में तो छोटा
0: चलो सुठो कयो सुठो मुखे बुधाए त जके प्रोडक्ट बुधाए थी इनन जे बारे में ता बुधो हुंदो अज ता वठंदो इस्तेमाल कंदा
1: मां ने जो खास शौकी ना आ बा जेकर करो शौकी ने
0: वो साबुन तो मर्द भी लगांदा है साबुन तो मर्द भी लगाए सकंदा ना क्रीम तो चलो मायो लगाइन पर मर्द तो साबुन हणी सकंदा ना तो साबुन भी आए ना
1: बस साबुन या ता बा जे हा जेड़ो पुछेरो मामा चला फाइया जो सके गरो ना है
0: साबुन हण जो जरूरी ता केन दोसन के याद कंदा ओके जी सो अस्मा लगारी अस सगर मौजूद है मेरे खास खान शो बुधे पई असाजे सोनी ए तवां भी अस्मा कॉल कयो आ त तवां जी लगी वनी आ त लाजमी कॉल कयो आ पर कॉल जका ना जो मां सोचा पई एकड़ी भी छोकरी जी कॉल खो ना आई चलो हाने जी को ना कॉल त असा थोड़ो साइड ते रखूं था ए टाइम भी ते थियो आ त असा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ हलूं था उनका पर वापसी जल्दी मोटी तवां दीदासी थोड़ी थोड़ी रेगुलर जको ना कॉलियों भी प्रोग्राम में ऐड कंदा जी उनन मानन सा भी कचारियों थी सगन जे के मानु बेचारा मैसेज ए असा के कमेंट नथा करे सगन सो प्रोग्राम तवां सबनी जो आहे जिन जो नालो आहे व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड आहे तव्हां ताईं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जे तावन सां तव्हां इस्तेमाल कयो पिया सोणा थियो पिया ऐं मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटावती तव्हां हिते वेठा हुजो मथां काॾे विया आहियो समझो था

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

शहजाद सोलंगी हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम दुबई. कहते हैं प्लीज प्ले फोजिया सुमरू. ओके शहजाद सोलंगी, मैं आपकी फरमाइश लगाने की कोशिश करती हूँ. और हमारे साथ मीर बेवस, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं. और ये जी हमारे साथ हैं अनवर भाई, कहते हैं कैसे बदले. अच्छा, कहते हैं कैसे बदले रूप गए हैं लोगों के, क्योंकि उनका हॉल उतरता जाता है. तहमीदों पर उसके मैं कुर्बान जाऊं, एक भी झूठ ना उसका पकड़ा जाता है. वाह वाह वाह वाह, क्या बात है. समझ नहीं, वो अलग बात है. अच्छा, ए मंसारी कहते हैं अपनों की दी गई अजियतें बिल आखिर इंसान को नफरत का आदि बना ही देती हैं. इंसान अपनी तोहीन माफ तो कर सकता है, लेकिन वो तोहीन कभी नहीं भुला पाता. खेडो न कमचू गालियों कया तो. बिल्कुल, करें करें कमचू गालियों करण जरूरी होता है. एड़ियों गालियों वाली करें करें मां भी कहती जरी कुछ पागल मानू जे केंदा है ना, वो मेरे जरी कमचू गालियों कंदा है तो मानू सोचण ते मजबूर थे ना. हां, ये मानू एड़ियों भी गालियों करे सके तो. बिल्कुल जी करे सके तो. बिल्कुल, तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी करी सको था. दिसो था ये माई के लिए सोनी आ जाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम ठाई हमारी लगाई भी आया, तो तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए सोना थी सको था. अनवर भाई, तुम टॉपिक थी चाहिए वाही, खुद से बातें नहीं करता पर खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ. चले, ये भी अच्छी बात. हजार भाई कहते हैं उसकी याद में दिल आज भी रोता है, जाने क्यों वो पल अब भी खूबसूरत लगता है. क्या खबर उसे मेरी बेचैनियों की, जिसका हर लम्हा उसकी यादों में खोता है. वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस. तमाम जो शायरियों ॾाढियूं भलियूं आहिनि, पर अॼु अलाए छो मुंहिंजे शायरीनि ते मूं टुको सो मथां गुज़री वञनि ॾियूं. और हुन खां अलावा हमारे साथ हैं जी मोलाई मुजाहिद बोसदार. ओके जी, आप लाड़काना से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया. अच्छा, भाजी सईदा जी बारे में पुछो, तो भाजी सईदा अलाए किथे घुमा बाबा.

अच्छा प्रिंस अफजल शाहीन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। किशोर भाई लिखते हैं कि चेहरा डिसी रिश्ता ठाण वारा था, हजारे आहे ने थे वो एड़ो गोलियां थो जो दिल डिसी साथ निभाए। वाह वाह वाह वाह एड़े तो मुकर हाँ जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अकेले बैठ कर लगा सकते हैं, अगर चार पांच लोगों को साथ बैठ कर लगाएंगे ना तो फिर आपकी जो एक डी स्किन ब्यूटी क्रीम की डब्बी ना वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो खुद अकेले बैठ कर लगाएं और इस तरह लगाएं कि किसी को पता ना चले, फिर ये जो आप ग्लो अप करके लोगों के सामने आ जाएं और बोलें कि भाई देखो देखो मां हाणे केडो सोहणो थी वियो आहियां। सो माण्हू तव्हां खां पुछनि दस दस छा थो वणे, पोइ तव्हां उन्हनि खे ॿुधायो त बाबा ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल अथव, हर को पंहिंजी पंहिंजी वठे ऐं ख़र्च जेको आहे न उहो पंहिंजो पंहिंजो अथव। सही आहे, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां माण्हुनि खे मशवरो ॾियो, चौ पांच ही बैठो।

नाजुक है। हाँ जी, जमाना नाजुक है और साथ साथ आप भी नाजुक ही, अपना ख्याल रखिए और इस्तेमाल करते रहिए टी स्किन ब्यूटी क्रीम और डायल करते रहिए 03157990595। अच्छा, ये इरम हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया इरम, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और इमरान भाई कहते हैं बाजी ही वारो गानों तलाए जो बाजा तांचो गानों हलाइंदासी बाबा सुबाने हलाइंदासी। इरम कहती है अच्छा यार, ओके ओके ओके। ये मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, आप ही सिदरा, क्या हाल है आपके? आई एम फादली लाशारी बलोच। आज सॉन्ग सुनाइएगा तकदीर ड्रामा ओएसटी लास्ट में पोएट्री के साथ, और प्रिंस मौसिन लाशारी, इम्तियाज हुसैन, हसन लाशारी, अयक्ति तां सभी छोकरिन के डेडिकेट करे सॼो आहे, सो थैंक यू सो मच। ए भी रिंदो हमारे साथ, डियर घर वाले तो कुछ नहीं कहते, ये सजा मुझे घर वाली की तरफ से मिलती है। भाभी मतलब तांगे बेजार करे रखियो, भाभी न क्यों ये बाबा अकेली कहीं मत जाना, समाना नासक है, समाना नासक है। अच्छा फायज़ अली जो गानों भाव हलाए सॼो सी न त तव्हांजे लाइ ज़रूरु हलायो। साइमा मीर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माय बेस्ट आर्टिस्ट डो, कैसी हो अब, सेहत तबीयत कैसी है अब? अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हूँ। और साइमा मीर कहती है शो मस्त है सफा मस्त, मुझे निगहत चाहिए वो भी आपके शो में, जल्दी लेकर आओ टॉपिक शुगर। मैं तो बहुत करती हूँ बातें, ये आदत मुझमें बचपन से है, और खुद से बातें करता है ना जो भी, वो स्ट्रांग जहीन और प्यारा होता है। ये अपनी तारीफ करी, ये बंदी अलग ही लेवल की है भाई, बहुत बढ़िया, लगे रहो। वैसे अच्छी बात है ना, चलो खुद से बातें करते हैं, मतलब उन्हनि माण्हुनि खे इहा त ख़बर हूंदी आहे त जेके ॻाल्हियूं मतिलबु असां पाण सां कंदा आहियूं उहे कंहिं ॿिए सां शेयर करणियूं ज़रूरी न आहिनि। ऐं वाक़ई ॻाल्हियूं ॾिठो वञे त कंहिंसां ॿिए सां शेयर करणु ज़रूरी न आहिनि हूंदियूं। अॼुकल्ह जहिड़ो दौरु हले पियो न, त ॻाल्हियूं कंहिंसां शेयर छा, कंहिंसां ॻाल्हाईंदा ई न कयो त बहितरु आहे।

हजम नहीं हो रही है, जमाना और नाजुक ना बबा ना। और ये हमारे साथी जी दुनिया जी ना ही परवाह सिस्टर तुंदे खेर हो जे कैसी हो सरदार हाजी एन हमारे साथ मौजूद है सरदार भाई तवां के चौथा भली करी आया और शोनी कहती है मैं भी आ गई आपी जी। बिल्कुल आप हमारा शो एंजॉय करें और थैंक यू सो मच। वो तो ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर के पास ना जरूर जाइएगा। और ये कहते हैं बाजी सलाम देता हूँ नबन खान जागीरानी, मोहम्मद खान जागीरानी, सनाउला जागीरानी को, इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। लियाकत अली खखरानी हमारे साथ ही लाड़काना से, अदी अस्सलाम वालेकुम, मैं भी आपके साथ प्रोग्राम सुन रहा हूँ, वेरी नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच प्यारी भाई। और ऐसे जो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। प्रोग्राम भाई आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं रोजाना 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं आप लोगों का खूब सर खाती हूँ। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मजे कर सकते हैं और सुन सकते हैं उन तमाम प्रोडक्ट के बारे में जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। तो चाहे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों को प्रोग्राम में बताए जाते हैं तो थोड़ा सीरियसली आप सोचें इनके बारे में इस्तेमाल करना शुरू करें। वैसे भी आप लोगों की स्किन जो होती ना यानी कि प्रोडक्ट उनको चाहिए होते हैं, तो स्किन के ऊपर अगर आप कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट लगाएं जो कि आप लोगों की स्किन को खराब कर दे, उसे कई गुना बेहतर नहीं कि आप उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो कि

आप लोगों की स्किन का ख्याल रखें, आप लोगों की स्किन को प्रोटेक्ट करें और आप लोगों की खूबसूरती को हमेशा बरकरार रखें। तो बिल्कुल जी, आपके पास व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप ट्राई करके देखिए, आपको मजे आ जाएंगे।

जी एसन और बानी हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। लास्ट में आए जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको। लुबी हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। लुबी कहती तमाम बेहतरीन शो और ब्यूटीफुल भी आपकी तरह। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी लुबी। अच्छा अल्लाह दाद गोरचानी हमारे साथ मौजूद है, नवाब शाह से तमाम सा मौजूद आए। सो मोहबतू आए तमाम जो प्रोग्राम

अच्छा ए मंसारी कहते माँ भी ढीठ हाँ फ्री सर्विस थे सोची नम वाइट एश बारन के मुझे मैसेज पढ़ाए जो ता यो मैसेज जको ना जको नंबर ता के बुधाया थी जिंदे तवा के रातो करे पांच एरिया में घुराना है उने नंबर ते यो मैसेज शेयर करी सडो ठीक है तो वो पान पढ़े नहीं ता अच्छा था चो अच्छा हजार भाई इस्तेमाल करें क्या बात है बहुत बढ़िया अमानुल्लाह टगड़ हमारे साथ मौजूद है हेलो

अच्छा क्या मतलब, जो लोग हमारे प्रोग्राम में नहीं शामिल हो रहे तो आ जाए भाई। अच्छा किशोर भाई कहते हाँ हाँ असं गजनी नायो असा के खबर आ असा वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो बुधू पया न मता ता का गाल विसरी वने तरी बुधाइंदी आया। अच्छा जदी मां कॉल दे मानन का पुछन या तोरी वो गजनी थी वेना तनी अच्छा हजार बात आज मोहब्बत हुआ है अमानुल्लाह टगर बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, एक में भी तन्हा थे सो में भी अकेले हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं अकेले। मोहम्मद समान भाई आपका बहुत शुक्रिया। एम कहते हैं कि टॉपिक पे कहूंगा कि हमें पहले देखना ये है कि हम रहते किस मुल्क में हैं, पैदा होते ही हमें वो चीजें मिली। एग्जैक्टली शायद आप सही हैं, वैसे ऐसी बातें बताई नहीं जाती, बंदर नजरों में आ जाता है। तो हाइट रखें खुद को। अच्छा उनका अलावा जी को आप टाइम थी वहाँ हाने तवा का इजाजत वठने जो सो वरी इंशाल्लाह तवा से मुलाकात थियण वारी आहे मुजी सुभाणे वारे प्रोग्राम में 1 बजे खां 3 बजे ताई तवा जो असन जो साथ रहंदो आहे। प्रोग्राम वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो में पांजो ओही दूसरो ख्याल रखंदा।

0: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए। मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल की जमहूरियत की, एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल की जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाल के मस्जिद की तरफ बढ़ें। आया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द चे इट नेवर टू लेट, आए बैठे मैं बातचीत में तैयार हूं।
1: वजीर आजम मकबिर बीहर अपोजिशन के मिसाक बहशत मिसाक जमहूरियत के गालन की दावत दे छी। कौमी असेंबली में खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ सियासत नजरियो सभी जो है, पर पाकिस्तान है तो सब आयू, असा तो सब भायर आन, को भी जड़ो ना पैर भी अपोजिशन लीडर की हैसियत में मिसाक जमहूरियत मिसाक बहशत लाए हो, पर मुझे खलूस के बदल आच के रद्द किया। हाँ भी दावत दियां तो अचो वेहो अगते वो चैनी सूबन की एक जी तरक्की मुझो मकसद है। कानून लाकुन इदारा मुल्क के अमन लाए डी रात कम कन पाया, सदन खिदमत कुर्बानन जो एतराफ़ और एतराम थे घुर्ज। पार्लियामेंट ते कदें भी को ठह न कंदी, पार्लियामेंट पाकिस्तान की ताकत है, माजी में कल गलतियों के भी सुधारे सके तो। कौमी असेंबली में बजट से गाली अपोजिशन लीडर महमूद खान फुकज़ाई तो समूरन मसलन जो रुगो एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेवार करार नो दे सके, रियासत के मसला ताकत बदर गाल जरिए हल कर घुर्जन, मान यकीन दियारो तो सदन इलाको सदन ही रहा मसला हल थी वा।

सिक्योरिटी फोर्सेज जो उत्तर वजीरिस्तान में ऑपरेशन एकवी दहशतगर्द मारजी पाया टिन डी दौरान फोर्सेज के ऑपरेशन दौरान मारजी पल दहशतगर्द जो अंग वी अठेताली थी पो ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेज कुछ इतला से मीरा शाह पर पासे में ऑपरेशन क्या जै दौरान एकवी दहशतगर्द मारजी पाया 72 कलाक दौरान ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्द के 4 अहम कमांडर समेत 48 दहशतगर्द मारजी पाया इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहा सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ कामयाब कार्रवाई से सिक्योरिटी फोर्सेज की वाखाण कई दहशतगर्द के खात्मे तई कार्रवाई जारी रखने वाले अजम जो वर्छाओ ईरान अमरीका से शुरुआती मुआहदे से इतफाक थियण की तस्दीक कर छी ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकसी है तो अमरीका से डी बिन में मुआहदो थी सके तो मुआहदे से सयू डिजिटली व्यवस्थी तलवार हमेशा जी अपने हुरमस से लटकंदी रही बिन सुपन से बदल मफामदी यादाश्त है जैसे बिन महीन तीन गालियों अपने हुरमस जो इंतजाम माजी का मुख्तलिफ हों जै बाबत तेहरान जो फैसलो हतमी है।

सिंध जे मुख्तलिफ़ शहरनि में आबाद घरनि जो पाणी जे खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। काज़ी अहमद जे मीर रुकन शाख में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ नंढनि आबाद घरनि जो एहतजाज। जातीअ जे सामूटी पटी में पाणी जे सख़्त खोट ख़िलाफ़ आबाद घरनि ऐं मुख़्तलिफ़ तनज़ीमनि तरफ़ां एहतजाजी जलूस कढियो वियो। पाणी फराहम करण जो मुतालबो।

कराची में रोल कुतन जो राज कुतन जो डाल वधिक एक शख्स रबी सबब फोत शहर में रबी सबब फोत न जो अंग वधि 14 थी भयो जना अस्पताल इंतजामिया मौजब पंज तलिन शख्स के कुतन डाड़ियो हो जे वैक्सीन न कराई हुई जो रबी सबब फोत थियो है शहर में रबी सबब फोत न जो अंग वधि 14 थी भयो

राधन बरसान थैली मोहब्बत में मंशा जे वेकरे खिलाफ़ शहरी जो अनोखो एहतजाज। शहरी अनवर मल्ला पान के जंजीरन में जखड़े मथे ते देग रखी अनोखो एहतजाज कयो। शहरी चयो तो शहर में सरियाम मंशा ते जुआ हली रही है, पर पुलिस का भी कार्रवाई न पई करे, हुकूमत नोटिस वठे।

घर में बेज़ुबान जानवरनि सां ज़ुल्मनि में घटिताई न थी। कलोई में जवाबदारनि ॾाचीअ खे कुहाड़ियुनि जा वार करे ज़ख़्मी करे छॾियो। गोड बांधो मोरा में अणॼातल जवाबदारनि कुहाड़ियुनि जा वार करे बेज़ुबान ॾाचीअ जूं चंगूं भञी छॾियूं। ॾाची जे मालिक अशरफ नेड़ियो पारां जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जो मुतालबो।

0: ज़ेन 32 लैंडिंग दौरान हादसे जो शिकार थो। हलंदड़ साल भारतीय फिजाए जहा 11 जहाज ए हेलीकॉप्टर के तबाह थे। जहाज तबाह सबब भारतीय एयरफोर्स की कारकर्दगी सवाल उठी रहा।
1: सोलर
2: सुन रहे थे जीए, आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो ए होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाने अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ए जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी ए सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 का शाम 6 तक बरोज जुम्मो 12 तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर मशोरे रबते 0327-99-84-763।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
5: GAFM 88
4: नेटवर्क
6: सिंध की

0: लेनी बात है।
1: पूरे मोहल्ले में बातें हो रही
0: कि वाशिक मार खा के भी वापस नहीं गया।
2: चला जाऊंगा,
0: और अगर मैं रोक लूं तो?
3: और अगर मैं रोक

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: के सुधारे सकते तो शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मजबूत करे एक मुआहदो करे तो जी सियासी जमायत एक बे जो टंगू न छिकन फेडरेशन सूबन के पैसा दींदी है या सूबन का वरता है पीटीआई बानी ते एतरी सख्ती न कयो एक बे के जेलन में वजन सा कुछ न थिंदो पीटीआई बानी से मुलाकात थिंदी छा थिंदो
2: कोई लड़ाई नहीं सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल के जमहूरियत की एक मरतबा नहीं ये सब गवाह हैं तारीख के और आप गवाह हैं आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन एक मरतबा नहीं एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल के जमहूरियत की तरफ बढ़ें आइए मिसाल के मंच की तरफ बढ़ें आया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफिस को टुकरा

पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी से मुलाकात कराने जो मुतालबो कौमी असेंबली में गलाइंदे बैरिस्टर गोहर चो सियासी इस्तेकाम से ही मुआशी इस्तेकाम इंदो बजट में गरीबन लाए कुछ भी ना है न बिजली की कीमत घट थी नई लोडशेडिंग से फर्क पयो है नई बो कुछ सस्तो थी

0: से बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है, बहुत भाई वाला ताल्लुक है। इशारों इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम स्पीकर साहब है।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जहाँ अपोजिशन मेंबर्स जी आवाज़न ते दिलचस्प जुमला सनाउल्ला मस्ती खेल के वापस अचण जी दावत दई छी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जे विसारा अपोजिशन लीडर महमूद खान अज़करी के दोस्त करार दिनों। शहबाज शरीफ चो सनाउल्ला मस्ती खेल वापस अचान चाहे तो पर कुछ मसला अथसि।

FBR मां सिफारशी कल्चर के खत्म कर छो है। FBR में अरबे रुपये की करप्शन रुगो शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपये जो खपलो हो। सुद समय वे वफाकी वजीर तारण पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहिए है तो पघारदार शख्स शुगर इंडस्ट्री जो पार छो खणे सुधारा करे खंड की सनत में टैक्स चोरी रोकी 60 अरब रुपया टैक्स हासिल कर माजी में मुल्की डिफॉल्ट शर्तू लगी हुई मौजूदा हुकूमत मुआशी इस्तक़ाम मादो जो अगत रो है। टैक्स में 1100 अरब रुपया रुगो कराची में गड थींदा। कराची के रस्तन की हालत खराब है। 18 साल का सिंध से करप्ट हुकूमत कायम है। कौमी असेंबली में बजट से गालाइंदे एमक्यूएम अगवान फारूक सतार है तो वजीर आजम की तकरीर में कराची जो जिक्र ही ना है। शहरों के सीधी रीत फंड दिना वन 2100 अरब सिंध के दिना पाया वन पैसा सिंध के मुख्तु शहर के मेयर्स के दिना वन 26 ए 28 तरमीम के सपोर्ट कर असाजे वारे से रेड लाइन अची वही मकानी दरन के खुद मुख्तियार बनो पव रुगो कराची न पर समूरन शहर के सीधी रीत फंड दिना वन ईरान अमरीका से शुरुआती मुआदे के इतफाक थे की तस्दीक कर छी। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराक़ी है तो अमरीका से डी बिन में मुआदो थे तो मुआदे से सयू डिजिटली क्यों व्यू असि तलवार हमेशा जी अपने हुरमत से लटकंदी रही बिन सुफन से बुधल मुफामती यादाश्त है जैसे बिन महीन तीन गालू रही अब्न हुरमत जो इंतजाम माजी का मुख्तलिफ हों जैसे

0: स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहा जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यानी कि त्रिन सुवन जो संगम आए
2: एक्सपोर्टर्स लाया है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वारे मुमलकती वजीर गुलाल अजहर कियानी सबूरन शोपन तां बार घटाने की कोशिश कई है। ही बजट पैंजो घर ठाईंदड़न जी बजट आए। घट पगार खड़ंदड़ तां गुजरियल सारी टैक्स घटायो हो, इन भेरे भी रिलीफ दिनो है। व्यापारियन एक्सपोर्टर्स और शिपिंग इंडस्ट्रीज तां भी टैक्स घटायो है। बजट से सनअतन के हथी मिलने से गड रोजगार जा जरिया भी पैदा थींदा। अपोजिशन की हुकूमत के गड़ी मामलों के अगते बढ़ाने की आछ। कौमी असेंबली में बजट से गालाइंदे महमूद खान चकसई गलतियों के सुधारे सकजे तो। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मजबूत करे एक माहिदो करे जी सियासी जमातों एक बे जो टंगू न चिकन। फेडरेशन सूबन के पैसा डींदी है, अवा सूबन का वरता है। पीटीआई बानी से एतरी सख्ती न कर एक बे के जेल में विझण से कुछ न थो। पीटीआई बानी से मुलाकात थन्दी छो।
3: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए। मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल के जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं तारीख के और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल के जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाल के मंच की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज अ चे इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे मैं बातचीत में तैयार हूं।
2: वज़ीर आज़म हिकु भेरो ॿीहर अपोजिशन के मिसा के मईशत ऐं मिसा के जमहूरियत ते ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त सियासत ऐं नज़रियो सभिनी जो पंहिंजो आहे, पर पाकिस्तान आहे त सभु आहियूं, असांजा सभु भाइर आहिनि। को बि जहिड़ो न आहे, पहिरें बि अपोजिशन लीडर जी हैसियत में मिसा के जमहूरियत ऐं मिसा के मईशत लाइ चयो हो, पर मुंहिंजे ख़ुरूस ते ॿधल आछ खे रद्द कयो वियो। हाणे बि दावत ॾियां थो, अचो वेहो अॻिते वधो। चइनी सूबनि जी हिकु जेतिरी तरक़ी मुंहिंजो मक़सदु है। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क के अमन लाए दिन रात कम कर रहा है। सदन खिदमतन कुर्बानियों जो एतराफ़ एतराम थे घुर्ज। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी से मुलाकात करण जो मुतालबो। कौमी असेंबली में गालाइंदे बैरिस्टर गोहर चयो त सियासी इस्तेकाम सां ही मुआशी इस्तेकाम ईंदो। बजट में गरीबन लाइ कुछ भी नाहे, न बिजली जी कीमत घट थी, न ही लोड शेडिंग ते फर्क पयो आहे, न बियो कुछ सस्तो थींदो।
3: मैं तो खत्म करा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाए आप।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीए एफएम नेटवर्क जी लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम लीगल कॉर्नर साण करे आवां हां आहां जो पैंजो मेज़बान बाबर शेख। इन उम्मीदों सां त आवां बिल्कुल ठीक ठाक हूंदा। अल्लाह पाक आवां सभिनी ते पंहिंजी रहमतुनि जा साया बरकरार रखे। समय प्रोग्राम लीगल कॉर्नर जेको आवां हर हफ़्ते ॿुधंदा आहियो जीए एफएम नेटवर्क तां। अॼु जे हिन लीगल कॉर्नर प्रोग्राम में असांजो टॉपिक आहे इलीगल डिस्पोज़िशन। असांजे पाकिस्तान जे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में आर्टिकल 23 राइट टू अक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी ॾिए पियो। जी हा, यानी तव्हां पाकिस्तान जे कंहिं बि इलाइक़े में हुजो, तव्हांजी जेका प्रॉपर्टी आहे उहा खे ख़रीद करणु, विकिरो करणु ऐं ट्रांसफर करण जो हक़ हासिल आहे। आर्टिकल 24 इन जी प्रोटेक्शन ॾिए पियो। एज़ वेल एज़ पाकिस्तान में इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट 2005 खां लागू बि आहे ऐं उन मुतालिक बि असांजी अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कशन थींदी। असांजे प्रोग्राम में अॼु लाइव स्टूडियोज़ में महिमान आहिनि एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहिबु, जेके तक़रीबन 10 सालनि खां वठी एडवोकेसी सां वाबस्ता बि आहिनि, लेक्चरार बि आहिनि लॉ कॉलेज में ऐं तमामु घणा इन्हनि जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बि क्वालिफाई थियल आहिनि। त एडवोकेट साहिब जी तरफ़ हलंदासीं। शहबाज़ साहिबु, अस्सलामु अलैकुम ऐं वेलकम टू द स्टूडियोज़।
1: वालेकुम सलाम बाबर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम वंस अगेन। एंड आई एम वेटिंग फॉर होल वीक एंड आई एम waiting for your messages and call that you will call me ke the next program ta sang karno
2: ha. Yes sir, asani paani ya khwaish ji,
1: I do wait for whole year for whole week ke ta zarur mukhe invite kando.
2: Bilkul,
1: so I here once again
2: before aaya bhi aayo ha. Asani khwaish hundi ta asa har week, agar har week na to be week lazmi program.
1: Thank you very much. This is your love and respect for me that you are giving me in your program.
2: Thank you so much sir. Aj jo asan jo topic hai illegal disposition, so illegal disposition di taraf achan खां पहिरियां पाकिस्तान जे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 23 and 24 जी तरफ़ असां अचूं पिया, इनखे थोरो तव्हां ब्रीफली वज़ाहत कंदा।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सभ खां पहिरियों बाबर 10-12 प्रोग्राम न बल्कि सॼो साल प्रोग्राम करण खां पोइ हिकिड़ी शइ त मां हिन सम्झी वियो आहे त यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। अगरि तव्हां एडवोकेसी में अचो त वकालत में तव्हांजो फ्यूचर तमामु सुठो आहे। वजह इहा आहे त हिन पूरे साल में जेतिरा बि असां प्रोग्राम कया आहिनि, तव्हां मूंसां कया आहिनि या डिफरेंट जेके बि असांजा हिते एडवोकेट ॿाहिरि आया आहिनि, तव्हां उन्हनि सां कया आहिनि, लर्निड काउंसिल सां जेके बि आया आहिनि, इहा आहे त तव्हांजी स्टडी ऐं रिसर्च थोरी डीपली थी वई आहे
2: ऐं
1: तव्हांजा यूनिक टॉपिक जेके आहिनि जेके पब्लिक सां रिलेटेड हुजनि, छोकि ला त इलाही वसी आहे।
2: बिल्कुलु,
1: पब्लिक सां रिलेटेड तव्हांजा टॉपिक आउट क्लास हूंदा आहिनि, हे बि त उन्हनि टॉपिकनि मां हिकिड़ो तमामु सुठो टॉपिक तव्हां खणी आया आहियो जिते डिस्कशन कंदासीं इनशाला। फर्दर जेको आर्टिकल जे हिसाब सां पुछियो, हाणे आर्टिकल 23 तव्हां पाण ई अलहमदुल्ला सुठो ब्रीफ करे वियो, सुठो ई ॿुधायो वियो, नो नीड टू रिपीट इट हेयर।
2: ॾिसो,
1: इन में हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए रहा के एवरी सिटीज़न। हाणे सिटीज़न केरु आहे? कॉन्स्टिट्यूशन 1973 मुताबिक़ सिटीज़न उहो माण्हू आहे जंहिंखे नेशनैलिटी हुजे पंहिंजे मुल्क जी। सपोज़ हिकिड़ो पाकिस्तान या मां या सबर मां NIC होल्ड कयां थो पियो, मुंहिंजी पैदाइश हितां जी आहे, मुंहिंजे वॾनि जी पैदाइश हितां जी आहे ऐं मां पाकिस्तानी आहियां। या इन खां अलावा कुझु अहिड़ा माण्हू जेके थ्रू हिकिड़ो स्पेसिफिक पीरियड खां वठी करे हिन वक़्तु पाकिस्तान में रहनि था ऐं उन पीरियड जे करे, उन पर्टिकुलर पीरियड जे करे हुननि पाकिस्तान जी नेशनैलिटी अक्वायर करे छॾी आहे, या ड्यूअल नेशनैलिटी जेके हूंदा आहिनि, माना हिकिड़ी ॿिए मुल्क जी बि नेशनैलिटी रखंदा आहिनि, पंहिंजे मुल्क जी बि नेशनैलिटी रखंदा आहिनि, हिते लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए रहा उहो माण्हू जेको पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखे, उनखे हक़ आहे, राइट आहे प्रॉपर्टी वठण जो, प्रॉपर्टी खे डिस्पोज ऑफ करण जो, प्रॉपर्टी खे अक्वायर करण जो ऐं प्रॉपर्टी खे सेल आउट करण जो। आर्टिकल 23 असांखे उहो सॼी लिबर्टी ॾिए थी पई जेको हिकिड़ो सिटीज़न खे, हिकिड़ो पाकिस्तान एज़ अ स्टेट हिकिड़ी लिबर्टी ॾिए थी त पंहिंजी प्रॉपर्टी खे वठणु, यूज़ करणु, इस्तेमालु करणु विद इन एम्बिट ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जे अंदरि ई रही करे पंहिंजी प्रॉपर्टी खे स्पेसिफिक तरीक़े सां, सुठे तरीक़े सां प्राइवेटली ऐं जेको आहे न पर्सनली बि इस्तेमालु करे सघे थो पियो।
2: ऐं सेकेंडली सर, आर्टिकल 24 में प्रोटेक्शन हिन जी हासिलु आहे
1: जी,
2: उन ते बि असांखे थोरी वज़ाहत।
1: आर्टिकल 24 बेसिकली इहो आहे की अगरि को माण्हू प्रॉपर्टी वठी थो छॾे, हाणे उहो मालिक आहे उन प्रॉपर्टी जो, ठीकु आहे, तव्हां उन माण्हू खे प्रॉपर्टी मां तेसि ताईं डिस्पोज़ नथा करे सघो जेसि ताईं उहो को इलीगल तरीक़े सां उन एडॉप्ट न कई हुजे या को कानूनी तरीक़े सां। सपोज़ अगरि को कानूनी तरीक़े या उहो अहिड़ी जॻह ते रहे थो पियो जेकी स्टेट सां रिलेटेड प्रॉपर्टी आहे, गवर्नमेंट सां रिलेटेड प्रॉपर्टी आहे, उन अक्वायर करे छॾी आहे, त तेसि ताईं तव्हां डिस्पोज़ नथा करे सघो जेसि ताईं उहो लॉफुल तरीक़े सां, अदरवाइज़ इट विल बी कॉल इलीगल डिस्पोज़ेशन. 2024 बेसिकली प्रोटेक्ट थो करे राइट, माना कंहिं बि सिटीज़न जे उन हक़ खे प्रोटेक्ट थो करे पियो जेको प्रॉपर्टी ख़रीद करण खां पोइ कोई उनखे बेदख़ल न करे सघे.
2: प्रॉपर्टी
1: वठण जो
2: सर हाणे अचूं था इलीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट 2005 ते, हुन तरफ अचण खां पहिरियां मां ॿुधाईंदा त वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इलीगल डिस्पोज़ेशन.
1: बाबा इलीगल मीन्स ग़लति तरीक़े सां, डिस्पोज़ेशन मतिलबु बेदख़ल करे छॾणु. कंहिं बि माण्हू खे अनलॉफुली पंहिंजे घर मां या जाइदाद मां या प्रॉपर्टी मां बेदख़ल करण खे ई इलीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट चवंदो आहे सिंपल ज़बान में.
2: अच्छा, हिनखे थोरो एग्ज़ाम्पल अगरि तव्हां
1: एग्ज़ाम्पल मतिलबु एग्ज़ाम्पल इहो हूंदो जीअं हाणे तव्हां हिते सपोज़ मूंसां गॾु वेठा आहियो, तव्हां हिकिड़ी प्रेमिसिस में वेठा आहियो, अगरि कोई ॿाहिरों को माण्हू अचे ऐं तव्हांखे फोर्सफुली थो ॿाहिरि कढी छॾे, उन फोर्सफुल ॿाहिरि कढण खे ई जेको आहे न इलीगल डिस्पोज़ेशन चवंदो आहे. छोकी तव्हां वटि अख़्तियार नाहे, बग़ैर अख़्तियार जे तव्हां कंहिं माण्हूअ खे उनजी राइटफुल ओनरशिप तव्हां ॿाहिरि नथा माना धकेले सघो या उनखे कढी सघो. दैट इज़ रिलेटेड टू दैट टॉपिक रिलेटेड टू इलीगल डिस्पोज़ेशन.
2: ऑलराइट सर, हाणे पर्पस ते अचूं, इलीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट 2005 जो पर्पस छा हो?
1: 2000 इलीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट जो जेको पर्पस हुयो, मेन पर्पस हुयो टू प्रोटेक्ट द सिटीज़न फ्रॉम लैंड ग्रेबर, लैंड माफिया, and for from those person who are forcefully evicting someone from his property ya from his lawful occupations, unna ka protect karan je laye that law was created in 2005.
2: All right, and he said ye ko act hai yo pakistan mein jo kehri had tai lagu the to
1: inne ke jaman extension through okay. pakistan ji jetri bhi had pakistan je jaisa bhi mana pakistan ji domain vanye thi pai taisi pure throughout pakistan mein yo lagu the.
2: All right, I said section 2 mein jo definition sign property थी वियो, ऑनर थी वियो, एंड इलीगल पोज़ीशन ऑक्यूपायर, इन ते थोरो असांखे ब्रीफ ॿुधाईंदा, देन वरी असां ॻाल्हाईंदासीं लॉफुल ऑनर एंड लॉफुल ऑक्यूपायर ते.
1: Lawful owner means the person who is holding the property. जंहिंजे नाले ते प्रॉपर्टी आहे, ठीक आहे, या जेको अक्वायर करे थो, जीअं आर्टिकल 23 में मां तव्हांखे ॿुधायमि कॉन्स्टिट्यूशन जे, के कोई बि माण्हू जेको प्रॉपर्टी ख़रीद थो करे, अक्वायर थो करे, या प्रॉपर्टी में रहे थो पियो लीगली तरीक़े सां, ठीकु आहे न, विद इन एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंहिं बि रूल ऐं रेगुलेशन खे वायोलेशन नथो करे पियो, उन सां रिलेटेड हूंदो आहे त उहो लॉफुल ओनर आहे, उन प्रॉपर्टी जो मालिक आहे. देन देर इज़ अ नेक्स्ट टर्म आहे जेकी आहे लॉफुल ऑक्यूपायर. लॉफुल ऑक्यूपायर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की उन टेम्पररी बेसिस ते उहा जॻह वरिती आहे कंहिंखां करे, सपोज़ जे असां ॿ टे ॿ हफ़्ता पहिरियों रेंट प्रेमिसिस टेनेंट जो कयोसीं, त टेनेंट जेको हूंदो आहे न बेसिकली उहो लॉफुल ऑक्यूपायर हूंदो आहे, या उन परमिशन वरिती हुजे लॉफुल ओनर खां फॉर स्पेसिफिक पीरियड ते रहण जे लाइ, उनखे चवंदो आहे लॉफुल ऑक्यूपायर. फ़र्क़ु इहो आहे त होॾे टाइटलमेंट आहे, एंटाइटलमेंट उन वटि रहंदी, सिर्फ़ु पोज़ेशन यूस करण लाइ ॾींदो, उनखे लॉफुल ऑक्यूपायर चवंदो
2: आहे. मतिलबु हिन मां असांखे वाज़े थी वियो त प्रॉपर्टी छा आहे.
1: सेक्शन में मतिलबु इहो त हुजनि ॿई राइटफुल, रॉन्गफुली माना न हुजनि, प्रॉपर्टी बि उन्हनि जी हुजे ऐं अगरि को ऑक्यूपायर बि आहे या उते रहे थो पियो फॉर टेम्पररी बेसिस ते, उहो बि लॉफुल हुजे तरीक़े सां.
2: All right, sir. Section 3 में prevention of illegal possession of property आहे. इन सेक्शन खे जेको आहे त हिन एक्ट जो बैकबोन छो पियो चयो वञे?
1: हिन एक्ट जो बैकबोन हिन करे चयो वेंदो आहे बाबर, त पहिरियों दिन तव्हां डेफिनेशन ते अगरि तव्हां वेंदो त हिन में चारि शयूं, हिन जा चारि इनग्रीडियंट्स आहिनि.
2: ओके,
1: ठीकु आहे. उन इनग्रीडियंट जो सभ खां पहिरियों इनग्रीडियंट्स इहो आहे की नोबडी कैन डिस्पोज़ेस एनी पर्सन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, ठीकु आहे, ऐं उनखां पोइ उहो प्रॉपर्टी खे ग्रेब न कंदो, प्रॉपर्टी खे इलीगल तरीक़े सां ग्रेब करे थो पियो, इलीगली तरीक़े सां डिस्पोज़ेस करे थो पियो, इलीगली तरीक़े सां कंट्रोल करे थो पियो, इलीगली तरीक़े सां उनखे अक्यूपाए करे थो पियो उन जॻह ते. इन जे करे इनखे बैकबोन चयो वेंदो आहे. ॿियो बैकबोन इन करे चयो वेंदो आहे, जेकॾहिं असां हिन सेक्शन जी अगरि असां डेफिनेशन्स में वेंदासीं त इहे चारि इनग्रीडियंट्स असांखे मिलंदा, जेके ज़ाहिर कंदा त कंहिं बि माण्हू खे फोर्सफुली इविक्ट कयो वियो आहे इन चारि बेसिस ते, इलीगली डिस्पोज़ेस्ड, इलीगली ग्रेब्ड, इलीगली कंट्रोल्ड, इलीगली अक्यूपाइड. माना माण्हू आया, दाख़िल थिया, डिस्पोज़ेस कयनि, कंट्रोल कयनि, ग्रेप कयनि, वरी उहा ई जॻह अक्यूपाए करे छॾनि. हाणे इहे बैकबोन ते मां अचां थो, रिपीट थो कयां हिन सेंटेंस खे. बैकबोन इन करे चयो वेंदो आहे, अगरि कोई बि माण्हू वायलेशन करे तो इन सेक्शन जी त कहीं भी मानू के लॉफुल ओनर के या लॉफुल ऑक्यूपायर के इलीगली तरीके से डिस्पोज करे तो पियो तो उनते 10 सालन जी सजा लागू थे थी पई प्लस में उनते फाइन भी आ 544 ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जे हिसाब से उनजे मतो कंपनसेशन भी आ ठीक है एको जे कंपनसेशन चार्जी थी दिया पनिशमेंट भी ताके समझ में अची वई ताके फाइन भी समझो के कोड दी दिया अगर प्रूफ तो थी वने प्राइमा फिशा आ जो कने मींस रिएक्ट्स प्रूफ तो थी वने के हिनन के जको आ इंटेंशनली जानी हुजी करे हन घर मा जोरी जबरदस्ती कडियो आ जको उन जो हक ना है ऑक्यूपाई कयो आ इनन कंपनसेशन में छा थिंदो आ त जे मानु दाखिल थिया तोड़ पोड़ कयन जगह भनी छदेन जगह जो सामान भनी छदेन इन द एंड उनन के सजा मिली त कोर्ट उन जे मथो 544 ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जे हिसाब सा इनन ते कंपनसेशन भी लागू करे छर दिया त हाने ता ने के जको भी ता इंजरी दिनी है ने के वो ता भराय दिंदो
2: ऑल राइट
1: इज द रीजन के इनके बैकबोन चाहिए होता जो कि इनमें पनिशमेंट भी आए इनमें मेन इंग्रेडिएंट्स ही बुधाए व्यान तो इलीगल डिस्पोजिशन तदे लागू थिंदो जब ये चार इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंदा
2: ऑलराइट अच्छा सर इनते थोड़ा सा वाजी थोड़े अगर गल है इलीगल डिस्पोजिस ते प्रॉपर्टी जे किया इमो जे का प्रॉपर्टी आए उनते किए इलीगल डिस्पोजिशन थे पई एक ता मिसाल लेनी ऑफिस जे ठीक है प्लॉट्स भी मानन जा हुंदा है ने प्लॉट से भी जे को आ काफी अरसो गरो खाली रहे पियो मानु अदावत करन शुरू करना है या कुछ गवर्नमेंट जा प्लॉट हुंदा है जते कुछ लैंड माफिया खणी चो वा प्लॉट कब्जा करे वठंदिया इन ते थोड़ी असा के वजाहत सा समझाइंदा
1: पेरो त सवाल यो होजन खपे त इलीगल डिस्पोजिशन खाग में केड़ा कानून होया या केड़ा सेक्शंस होया जेंजे करे जको न इलीगल डिस्पोजिशन जे अचण जी
2: जरूरत जी भाई जी
1: असा के थोड़ो बैकग्राउंड में पोते वणणो पोंदो पाकिस्तान पिनल कोड में कुछ सेक्शन 441 खा वठी करे 445 तक
2: ओके
1: पीपीसी क्रिमिनल ट्रेस पास अगर तुम डेफिनेशन खड़ा क्रिमिनल ट्रेस पास जी क्रिमिनल ट्रेस पास जी एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन आ जी इलीगल डिस्पोजिशन की फर्क सिर्फ एकड़ो आनमें मू फोर्सफुली घर में दाखिल थे घर में दाखिल थी करे तोड़ फोड़ करन था तोड़ फोड़ कर असॉल्ट करन था क्रिमिनल तरीके से कें मू के इंजरी दियन था पाया ठीक है उन जगह के ऑक्यूपाई कर पेरों यो हों हाँ लफ्ज इस्तेमाल थो माना लैंड माफिया लैंड ग्रेबर प्रॉपर्टी ग्रेबर हाँ इनके डिस्टिंग्विश किए कजे इं अगर तुम मिसाल अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर एग्रीकल्चर लैंड आज तुम चो था एग्रीकल्चर लैंड में 145 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जे हिसाब से अगर कोई धुलियों पान में विड़ी पवंद तो उनते मैजिस्ट्रेट एक्शन खड़ो हो एप्लीकेशन दींदी इतने मौतमार इतने मरण जो मारण जो कतरो इलाही आ तो उनमें मैजिस्ट्रेट इंटरवीन कर बिन्न पार्टी के घुरा कर पा में सेटलमेंट कराए छो हो हाँ रीजन थो तो हाँ डिस्टिंग्विश कें क्यों हाँ कोई चे मुख्य जबरदस्ती कढ़ सो लैंड ग्रेबर लैंड माफिया लैंड प्रॉपर्टी ग्रेबर जी फोर्सफुली कंखे जोरी या जबरदस्ती विथ इंटेंशन कंखे अगर तुम पेंी प्रॉपर्टी में बेदखल कौ उनके स्पेसिफाई कर स्पेशल लॉ क्रिएट कर इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट जी डिस्टिंग्विश थी करे डिस्टिंग्विश थे कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में फोर्सफुली इवेक्शन में जो फर्क वाजिया नजर अची वे फॉर दैट रीजन दैट एक्ट वॉज क्रिएटेड
2: ऑलराइट
1: प्रॉपर्टी हाँ अचूँ प्रॉपर्टी
2: प्रॉपर्टी
1: प्रॉपर्टी जो कंसर्न इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी उ प्रॉपर्टी हूँ दैट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजीली एडहेयर टू स्टिक हुजन जमीन से लगल हुजन हाँ उनमें तुझा घर भी थी तुझे बिल्डिंग्स भी थी व्यू तके भी अगर जरई जमीन से रिलेटेड एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड हुजन उ प्रॉपर्टी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सदाइन उतो भी तक कोई बेदखल न तो कर सके अगर कह तो वे ट्रेस पास बारे में इलीगल डिस्पोजिशन के दायरे में अची वो
2: ऑल राइट सो लिसनर्स प्रोग्राम में वक्त थो आई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो असा कमर्शियल ब्रेक की तरफ हल्दी देन अस मोटी प्रोग्राम में टॉपिक है असो इलीगल डिस्पोजिशन ए ब्रेक का बाद में जैसे ऐसी कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस सेक्शन 4 छापे चे असा गड एडवोकेट शहबाज हफीज साहब मौजूद हैं जे असा गुफ्तू कहता लाइव कॉल के जरिए असें ज्वाइन भी कर सौ असो नंबर है 0300 11 3488 सो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है असा गड रहो

0: अचण खां पहिरियां असां चाहींदासीं त तव्हां असांखे जेके टे टर्म्स आहिनि अवां यूस कयूं पंहिंजे गुफ़्तगू में, लैंड ग्रेबर, लैंड माफ़िया ऐं प्रोपर्टी ग्रेबर, इन ते थोरो डिफाइन कंदा, छा इहे हिकिड़े ई टर्म यूस पिया कयूं टे या टे इंडिविजुअल्स आहिनि?
1: Is a type of syndicate, is a group of individual that illegally acquire the property of someone.
0: Okay.
1: Mana wo group wo manan jo hikdo jatho hoje jeke habitually ya paisa vathi kare ya paan मिली करे कंहिंजी प्रॉपर्टी ते कब्ज़ो करे छॾनि लीगल तरीक़े सां, या कंहिंजे पैसनि जे थ्रू, या कंहिंजे चए ते कंहिं माण्हू खे बेदख़ल कराए छॾनि. सो इहा हिकिड़ी टर्म आहे, लैंड ग्रेबर, लैंड माफ़िया, प्रॉपर्टी. इन जो सिर्फ़ु ऐं सोल पर्पज़ इहो हूंदो आहे कि कंहिं बि माण्हू खे उनजी राइटफुल ओनरशिप तां, या जेको बि अगरि लॉफुल ऑक्यूपायर आहे उनखे बेदख़ल करे उनखे जेको आहे न पंहिंजे कब्ज़े में आणे
0: छॾणु.
1: दिस इज़ सेम टर्म,
0: हिकिड़ी
1: हिकिड़ो सिंडिकेट.
0: सो सर, सेक्शन 4 ते अचूं पिया, कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस ते. अवां ॿुधाईंदा त इन सेक्शन तहत कोर्ट जेकी आहे कहिड़ी बुनियाद ते कॉग्निजेंस वठी सघे थी. अच्छा, इन तरफ़ हलण खां पहिरियां लिसनर्स, तव्हांखे मां लाइव कॉलिंग नंबर ॿुधाईंदो हलां, 03000113488. इन गुफ़्तगु जे दौरान ई तव्हांजो लाइव कॉल्स प्रोग्राम में असां इंक्लूड कंदासीं. तव्हां प्रोग्राम में शामिल थी सघंदव. 5:39 टाइम थियो आहे ऐं प्रोग्राम मां बिल्कुलु लाइव ॿुधी रहियो. जी शेबा साहब,
1: कॉग्निजेंस बाबर, असां वटि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डायरेक्ट कंप्लेंट जो हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आहे,
0: ठीकु आहे,
1: जेके अंडर सेक्शन 200 जे तहत इहा डायरेक्ट कंप्लेंट ईंदी आहे. असां कंहिं बि सेशन कोर्ट में असां इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट जी कंप्लेंट दाख़िल कंदा आहियूं अगेंस्ट द पर्सन हू हैज़ डिस्पोज़ेस्ड, वेदर लॉफुल ऑनर और द लॉफुल ऑक्यूपायर. सो जॾहिं उहा कंप्लेंट वेंदी आहे त सेशन जज उन कंप्लेंट ते नोटिस वठंदो आहे.
0: सही.
1: सो अंडर सेक्शन 200 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, डायरेक्ट कंप्लेंट इज सबमिटेड बिफोर द सेशन कोर्ट.
0: अच्छा, छा हिन एक्ट में ट्रायल तरीक़ो आम सिविल केसिस खां मुख़्तलिफ़ आहे?
1: न, हिन में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो एप्लीकेशन हिते अप्लाई थो थिए पियो,
0: सॼो
1: CRPC, छोकी प्रोसीजर असांजो उहो एडॉप्ट थींदो न सॼो.
0: ठीकु आहे सर. सो हींअर असीं कॉलर जी तरफ़ हलूं था. फर्स्ट कॉलर मौजूदु आहे न. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम अदा. अलहमदुलिल्लाह अदा, केरु था ॻाल्हायो? जी जी अदा, प्रोग्राम ॿुधो पिया, कहिड़ो सवाल पुछणु चाहींदो? जी सॉरी अदा, मां सम्झियुसि कोन, ॿीहर ॿुधायो. जी जी, लीज़ ते, ठीकु आहे. शिवा साहब, सम्झो तव्हां हिन जी ॻाल्हि. जी रिपीट कंदा, लीज ते तव्हां चओ पिया ज़मीन तव्हां वटि आहे अॻिते. या तव्हांजी ॻाल्हि सम्झी शायदि शहबाज़ साहब सां, सर लीज़ ते प्रॉपर्टी
1: थोरो लीज़ ते वरिती वञे, ॿ धुरियूं पाण में.
0: जी जी जी,
1: लीज़ समथिंग डिफरेंट आहे. लीज़ ते बि अगरि लीज़ जो बि अगरि असां कॉन्सेप्ट खणूं त लीज़ जो बि ईअं ई हूंदो आहे त कंहिंखे सिर्फ़ु असां परमिट ॾींदाऊं त कंहिं शइ खे यूटिलाइज़ करण जो. पोइ लीज़ ते बि अगरि वरिती आहे को हुनखे बेदख़ल करे थो पियो, उहो बि लीगल डिस्पोज़िशन एक्ट में अचे थो.
0: अच्छा शहबाज़ साहब, हिन खां अलावा थोरो टॉपिक खां अलावा हिकिड़ो सवालु अचे पियो मुंहिंजे ज़हन में त अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो पिया त कुझु हाउसिंग स्कीम्स अहिड़ियूं आहिनि या कुझु प्रॉपर्टीज़ अहिड़ियूं आहिनि
1: जी
0: जो ॿिनि पार्टीज़ वटि रजिस्ट्रीज़ आहिनि, जंहिं वजह सां हुननि जा जेके आहिनि मतिलबु इलाही पुराणा जहिड़ा हलनि था पिया. इनखे कीअं पिया ॾिसो?
1: This is a total different case from the illegal disposition.
0: Ji, inna kha mucho te inna kha bilkul different hati kare sawal pya
1: kya. Ahe ta issue civil procedure code.
0: Ji ji.
1: Saja properties are related jeke bhi issues hunan, partition te hujan, documentation te hujan, cancellation te hujan, specific relief aid ja hujan, misal agreements are related, breach of contracts hujan. Ye saja jeke contract hunan, ye saja cases related to the civil procedure code.
0: All right.
1: Hane sa cha kanda, hane lazmi a keke case me इन्वॉल्व करण जे लाइ कोई न को हिकिड़ी पार्टी अहिड़ो रीज़न ॼाणाए छॾंदी आहे त हुनखे एम्बिट में खणी ईंदी आहे इलीगल डिस्पोज़िशन जे. छोकी हिन एक्ट जो सिर्फ़ु पर्पज़ इहो हुयो त क्विकली रिलीफ ॾियूं जेतिरो थी सघे कंहिं बि माण्हू खे, अगरि कंहिं बेदख़ल करे छॾियो आहे त हुनखे क्विकली रिलीफ कीअं ॾियूं त हुनखे वापसि हुनजी प्रॉपर्टी में रीस्टोर कराए हुनखे पोज़िशन वापसि ॾियारियूं.
0: हाणे
1: इन जे करे त ज़्यादातर माण्हू छा कंदा आहिनि, हेॾे मूव घणो कंदा आहिनि त इलीगल डिस्पोज़िशन जे अंदरि हलिया ईंदा आहिनि त जीअं असांखे क्विकली रिलीफ मिली सघे. सो हिन जा बि पंहिंजा हिकिड़ा प्रोसीजर ऐं तरीक़ा आहिनि जेके हिकिड़ो सेशन जॾहिं अडॉप्ट कंदो आहे उन खां पोइ वञी हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾींदो
0: आहे,
1: छोकी हे ॿ शयूं अलॻि अलॻि माना डिफरेंट
0: तरीक़नि सां कमु कंदियूं.
2: وعلیکم السلام بابر بھائی, آپ جو بار بند رہو کل کو سالہ پر ضلع فکر ہو میں
0: جی جی ادا
2: اسان جو حفیظ صاحب ہے سالات اگر کوئی غریب مانو آ کو گوٹھانو آ ویٹھلا سرکاری زمین تو ان کے سجن کا ویٹھلا ان کے بے دخل کرے تو ان کے بارے میں تو جو قانون چھپ کرے
1: कची आबादी आहे कोई वेठो हाणे गवर्नमेंट जी प्रॉपर्टी ते वेठो.
0: मां
1: प्रीवियस हिकिड़ो पाण टॉपिक कयोसीं त स्टेट इज़ अ मदर, ठीकु आहे न. स्टेट जो कमु आहे प्रोटेक्शन करणु, फूड प्रोवाइड करणु ऐं शेल्टर प्रोवाइड करणु. डिस्कस कयोसीं, सपोज़ हाणे माण्हू 40-40 सालनि खां वेठा आहिनि, 30-30 जनरली था ॻाल्हायूं, 30-30, 40-40 सालनि खां वेठा आहिनि, 25-25 सालनि खां वेठा आहिनि. अगरि उहो गवर्नमेंट जी बि प्रॉपर्टी ते वेठा आहिनि त गवर्नमेंट सभ खां पहिरियों उनखे फैसिलिटेट करे. हाणे मिसाल हाणे ऑल ऑफ सडन अगरि गवर्नमेंट सॼा रिकॉर्ड खणी ईंदी, घरनि जा घर जेको आहे न छा चवंदा आहिनि ड्राए छॾंदी, अल्टीमेट नुक़सानु आवाम खे ई थींदो. जॾहिं त स्टेट हूंदी आहे आवाम खे रिलीफ ॾियण जे लाइ, अगरि सपोज़ वेठा आहिनि सालनि जा साल वेठा आहिनि, वेठा त ग़लति तरीक़े सां, छोकी ओनरशिप आहे न, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जी आहे. पर मां हिते रिक्वेस्ट कंदुमि की अगरि ईअं बि अगरि को गवर्नमेंट स्टेप खणे थी पई, सभ खां पहिरियों हुनखे रिहेबिलिट करे, हिननि खे पहिरियों हिकिड़ो स्पेसिफिक जॻहियूं ॾे, उनखां पोइ वञी करे उन प्रॉपर्टी खे जहिड़े तरीके सां इस्तेमाल करे.
0: सही. ऐं सेकेंडली सर, तव्हां ॾिठो आहे हिते अहिड़ी प्रॉपर्टी जेके न सेल परचेस बि थींदियूं आहिनि, उहो अक्सर कुझु केसिस मूं अहिड़ा ॾिठा जो जीअं पार्टी इहो परचेस कयो त विद इन वन मंथ जेको आहे न उनखे गवर्नमेंट जेको आहे त उनजी प्रॉपर्टी
1: रजिस्टर न कराईंदा हिकिड़े डिमांड नोटिस जेको आहे न सेल ऐं परचेज जो. मूं वटि बि हिकिड़ो केस आयो हुयो त हिकिड़ो भाउ ॿिए भाउ जे मथां इहो केस करणु चाहे पियो, त मां हुनखे चयुमि त तव्हां क्लेम कीअं कंदो, तव्हां त कची आबादी थियो, छा तव्हां डिमांड नोटिस बि अवेलेबल आहे जेको शो करे त तव्हां रियल ओनर हो ऐं तव्हां गवर्नमेंट खां इहा शइ लीज़ ते वरिती आहे. उहा हुननि वटि न हुई. वठे बि थो त कोशिश करे डिमांड नोटिस ते या कोई बि कची आबादी स्कीम आहे उन ते पाण खे रजिस्टर कराए छॾे, बाद में गवर्नमेंट हुनखे कंपनसेट करे सघे
0: थी.
1: प्रोटेक्शन हूंदी आहे न, बच बचाव थी वेंदो आहे न.
0: सो कॉलर मौजूदु आहे, हिकिड़ो ॿियो कॉलर शामिल कयूं पिया. अस्सलाम वालेकुम.
3: وعلیکم السلام.
0: جی وعلیکم السلام.
3: سائیں وتا سوال کیو تے بدری بات ملی تھانے.
0: سوری ادا آواز وچ گھٹ ہے, بیئر بدایو.
3: ٹھیک ہے. ان کا جو 5-4 چیز کے کیا سارے زمین ہے تو جو کسٹمر چاہے کی تھی
0: تا سمجھو سر.
1: बाबर सभ खां पहिरियों सिग्नल जो ॾाढा इशू
0: आहे.
1: मां पर्सनली चवां थो, मां जेकी सिम्स यूज़ थो कयां पियो उन में हिकु या ॿ काल पहिरियों ड्रॉप थींदियूं आहिनि, पोइ टी काल ते सिग्नल ते इशू हुजो.
0: ड्रॉप में
1: माज़रत ई करे सघूं था, हाणे सिग्नल ड्रॉप थी थिए, सम्झी नथा सघूं असां.
0: सो हिकिड़ो ॿियो कॉलर आहे. अस्सलाम वालेकुम. अदा केरु था ॻाल्हायो, सवाल पुछो पंहिंजो. लास्ट कॉलर शामिल करे असां टॉपिक जी तरफ़ अचूं
1: पिया.
0: सो लेट्स सी लाइन ते गॾु केरु आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम.
4: हा सैया.
0: जी जी अदा, केरु था ॻाल्हायो भा? ओके, सवाल पुछो पंहिंजो.
1: हिकिड़ो बाबर कम कयो, हिननि खे तव्हां मुंहिंजो नंबर ॾेई छॾिजो, सालिया पट सां ई तालुक रखनि था, ॿिए भली मूंसां इंडिविजुअल लेवल ते ॻाल्हाए छॾनि, थी सघे थो मां हिननि जो प्रॉब्लम हिननि खे हिन जो सोल्यूशन हिननि खे ॾेई छॾां. अदा मां नंबर रिपीट करे छॾंदुमि लास्ट में, तव्हां जेको आहे उहो नोट करे छॾिजो, तव्हां पोइ मूंसां बाद में.
0: शेवा साहब, टॉपिक जी तरफ़ अचूं पिया. सेक्शन 5 इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर तहत आहे, ऐं हिन सेक्शन तहत जेको आहे त इन्वेस्टिगेशन थिए पई, बुनियादी पर्पस छा इन सेक्शन तहत इन्वेस्टिगेशन जो
1: कॉग्निजेंस से अचूं सेक्शन 4 में कॉग्निजेंस ना पुछो जज साहब पहले तो कोर्ट केड़ी में वेंदो कोर्ट सेशन कोर्ट
0: ऑलराइट
1: जेकी भी है केसेस विद डायरेक्ट कंप्लेंट या लीगल डिस्पोजिशन एक्ट में जेकी जुरिसडिक्शन वो सेशन कोर्ट वटा सेशन कोर्ट छा कंदी कॉग्निजेंस वठण का पो ब कम कंदी पहरो कंसर्न एस एच ओ हद जे एस एच ओ के डायरेक्शन दींदी त रिपोर्ट्स ठाए खणी अचो जेकी कंप्लेंट थी आ वाकई जायज़ आहे या नाहे हाणे पुलिस छा कंदी पुलिस कंप्लेनेंट खे घुराईंदी पुलिस कंप्लेनर जे विटनेसिस खे घुराईंदी पुलिस हुन खां जेके लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ आहिनि उहे घुरंदी प्लस में इंसिडेंट जिते थियो आहे जंहिं जॻह ते पुलिस वञी करे उते सॼी जी सॼी इंसिडेंट रिपोर्ट लिखी करे विद इन 15 ॾींहनि जे अंदरि कंसर्न हद जे जेको बि जज साहिबु आहे उन्हनि वटि खणी वेंदी ॿियो जज साहिबु छा कमु

0: कंदा, ऑनरेबल सेशन कोर्ट छा कम कंदी, पंहिंजे ई हद जे इंक्वायरी कंडक्ट करण जे लाइ रेवेन्यू ऑफिसर खे, मतिलबु रजिस्ट्रार खे, मुख्तियारकार खे, असिस्टेंट कमिश्नर खे डायरेक्शन ॾींदी त तव्हां इंक्वायरी कंडक्ट कयो जेकी इहे प्रॉपर्टी क्लेम करनि था पिया छा इहा प्रॉपर्टी ते सिचुएटिड आहे। सिटी ते करण जे लाइ कोई बि हिकिड़ो मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करे सघे थी जेको इंक्वायरी रिपोर्ट ठाहे करे विद इन 50 डेज़ में सेशन जज खे सबमिट कराईंदो। सो इन्वेस्टिगेशन इन जो पर्पज़ सिर्फ़ु इहो आहे त जेकी डायरेक्ट कंप्लेंट आई आहे असां वटि इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट जी, छा हुनजी फिटिंग फुटिंग आहे या नाहे, छा हुन में जेके फैक्ट्स ऐं फिगर ॾेखारिया विया आहिनि छा उहे वाकई रिलायबल आहे। इन्वेस्टिगेशन जीअं रिपोर्ट पेश थी वेंदी त जज साहिब छा कंदा, डे टू डे। हाणे हे इलीगल डिस्पोज़िशन पूरे हुन में लॉ में वाहिद हिकिड़ो एक्ट आहे जंहिंमें कोई बि एजरमेंट नाहे। डे टू डे माना जीअं रिपोर्ट पेश थी वई, इंक्वायरी रिपोर्ट ऐं पुलिस जी रिपोर्ट जीअं अची वई, प्रूफ थी वियो, प्राइमा फेशिया अची वियो ऐं जेको आहे न मेलाफाइड ज़ाहिर थी वियो सपोज़, त जज हुन ते एक्शन खणंदो ऐं हिन ते छा कंदो, डे टू डे कारवाई, मतिलबु ट्रायल शुरू करे छॾंदो। कॉपी सप्लाई थी वेंदियूं, अक्यूज़ पर्सन्स अची वेंदा, हुननि जा पंहिंजो छा चीफ रिकॉर्ड थींदो ऐं प्लस में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन शुरू थी वेंदी सॼी, ठीकु आहे, कंहिंजी कंप्लेनर जी जंहिं डायरेक्ट कंप्लेन दाख़िल कई आहे हुनजो चीफ, ऐं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन शुरू थी वेंदो। एजरमेंट नाहे ॾियणी, विदिन 60 डेज़ में तव्हांखे जेको आहे न पूरो जो पूरो ट्रायल कंडक्ट करणो आहे। अगरि गुंजाइश पइजी थी वञे एजरमेंट ॾियण जी, चवनि था त 7 डेज़ खां, माना लिखियलु आहे लॉ में लिखियलु आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 7 ॾींहं, बाक़ी अदर गुंजाइश न, उहो बि कॾहिं रेयर केसिस में, रेयर केसिस में, हाणे रेयर केस कुझु बि थी सघे थो, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसिस असां लफ़्ज़ यूज़ कंदा आहियूं, उन खां अलावा बाक़ी विद इन 60 डेज़ में तव्हांखे सॼो जो सॼो जेको ट्रायल आहे उहो कंक्लूड करणो आहे। अगरि कंप्लेंट इन मेलाफाइड अगरि अक्यूज़ जो साबित थी थो वञे त हिननि खे डिस्पोज़ेस कयो आहे इलीगल तरीक़े सां, त जीअं मां तव्हांखे ॿुधायमि त 10 सालनि ताईं, अप टू 10 सालनि ताईं सज़ा, न त डिपेंड अपॉन द जज खे उहो 3 साल जी सज़ा ॾिए, 4 साल जी ॾिए, उन्हनि जे मथो आहे प्लस में फाइन ऐं मथो कंपनसेशन सेशन अंडर सेशन 546A। पर प्रोवाइडेड दैट हिकिड़ी शइ हिन में हिकिड़ी ॿी बि आहे, अगरि कंप्लेनेंट साबित न करे सघियो, सभु कुझु कूड़ो थी वियो ऐं प्रूव न करे सघियो त हिननि मूंखे डिस्पोज़ेस कयो आहे, छो की न आहे त सिर्फ़ु अक्यूज़ पर्सन जे लाइ ई इलीगल डिस्पोज़ेशन आहे, छोकी माण्हू कॾहिं कंहिंखे फसाइण जे लाइ बि लाभ दाख़िल करे छॾंदा आहिनि केस। हाणे इन सूरत में पूरी जी पूरी कंप्लेंट फॉल्स निकिती, फ्रिवोलस निकिती, ठीकु आहे। हाणे जज छा कंदो, उहो सॼो जो सॼो जेको बि फाइन आहे, हिते त छा हुयो सज़ा बि हुई, हाणे कंपनसेशन बि, हाणे जज हुनजे मथां पेनल्टी हणंदो, कंप्लेंट जे मथां 5 लख तूं हाणे अक्यूज़ पर्सन खे भराए ॾींदे, अच्छा तूं हिन जे ख़िलाफ़ ग़लति केस दाख़िल कयो आहे। सो मां ॿुधाइण वारनि खे इहो चवणु चाहींदुमि, ॾिसण वारनि खे बि चवणु चाहींदुमि त इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट जे तहत अगरि तव्हां अचो था पिया त कंप्लेनेंट खे इहा ज़रूरु ख़बर हुजे, अगरि मां साबित न करे सघियुमि त मुंहिंजे मथां 5 लख जो फाइन लॻी सघे थो पियो, 5 लख जी पेनल्टी लॻी सघे थी जेकी मूंखे अक्यूज़ पर्सन खे ॾियणी हूंदी।
1: साबित करण लाइ सिर्फ़ एविडेंसिस न वटे एविडेंसिस
0: ॾिसो न, मां छा चयुमि, हर लाइ ॿिन्हिनि जे लाइ हूंदो,
1: जी
0: सिर्फ़ु हिकिड़े जे लाइ न हूंदो आहे, ॿिन्हिनि जे लाइ हूंदो
1: आहे। सर, सेक्शन 6 पावर टू अटैच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अटैच करण जो मक़सदु हिन ते थोरो आहे।
0: हाणे इहो इंट्रस्टिंग आहे, प्रॉपर्टी अटैच केरु कंदो, हिकिड़ी प्रॉपर्टी आहे खाली पई आहे सालनि खां वठी करे, नो बॉडी इज़ क्लेमिंग ऑन दैट प्रॉपर्टी, ठीकु आहे, ऑल ऑफ सडन ॿ धोरियूं अची वियूं, साईं हे त असांजी आहे, हिकिड़े चयो हे मुंहिंजी आहे, हाणे सिविल लिटिगेशन में वञणु नथा चाहिनि, हाणे हुननि हिकिड़ो केस दाख़िल करे छॾियो, साईं हे प्रॉपर्टी असांजी आहे ऐं हिननि छा कयो आहे, असां हिते कमकार मरमत जेकी बि मरमत करायूं पिया, कंस्ट्रक्शन जो कमु करायूं पिया, असां बीठा हुयासीं अंडर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, हे 4 माण्हू आया असांखे ॿाहिरि फिटी करे छॾियनि, असांजो सामान कढी करे असांजा मजदूरनि खे, असांखे असांजा कंस्ट्रक्शन सामान ॿाहिरि फिटी करे छॾियो, ठीकु आहे, या ताला भञी करे अंदरि दाख़िल थी विया, माना क्रिमिनल ट्रेस पास, असांजी एब्सेंस में क्रिमिनल ट्रेस पास कई अथनि, हाणे इलीगल डिस्पोज़िशन जो केस दाख़िल करे छॾियनि,

0: जुडिशल कस्टडी में वठी छॾंदा हिन खे पंहिंजे एडमिनिस्ट्रेशन जे अंदरि रखंदा जेसि ताईं केस ख़तमु न थींदो तेसि ताईं या कोर्ट जे अंदर या कोर्ट जे कंट्रोल में रहंदी. अगरि सपोज़ इहा ई प्रॉपर्टी अगरि को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आहे, जीअं हाणे अंबनि जो सीज़न आहे, अंब लॻा पिया आहिनि, आल ऑफ सडन त हाणे प्रॉपर्टी हुनखे सीज़ करे छॾियो, ठीकु आहे, तहवील में वठी छॾियो. हाणे अगरि नेचुरल डिके जो शिकार थींदी, छा अंबनि अगरि असां न कढंदासीं या खारकूं न कढंदासीं, ख़तमु थी वेंदियूं, पोइ छा कंदा उहे सॼा लाहे करे हुनजो जेको बि विकिणे करे मार्केट में जेको बि पैसो उहो बि पंहिंजी तहवील में रखंदा. न खारकूं खणे, हा, जीअं केस ख़तमु थी वेंदो उनखे जेको बि हुन मां पिकनरी गेन थींदो उहो जज साहिबु हुनखे वापसि हैंड ओवर करे छॾंदा प्रॉपर्टी तव्हांजी. उन सेक्शन जे तहत इहो जेको आहे पावर टू कोर्ट पंहिंजे तहवील में वठी छॾंदी.
1: वक़्तु मुख़्तसिर आहे, पाण वटि ॿ टे सेक्शन अञा रहिजी विया आहिनि. मां सम्झां पियो त असांखे डायरेक्ट हाणे सेक्शन 9 ते अचणु घुरिजे एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट ते, छाकाणि त ओनली 3 मिनट्स
0: सेक्शन 9 खां अॻु में. सेक्शन 9 त सिर्फ़ु क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एडॉप्ट थो थिए. प्रोसीजर असां वटि हाणे हिन में जेको ट्रायल आहे उहो 265C खां शुरू थो थिए. 265B खां अगरि चओ जे सप्लाईज़ ऑफ कॉपी खां वठी शुरू थिए थो वञी करे 265K ताईं इहो पूरो सेक्शन या ट्रायल हिन में जेको आहे न लागू थिए थो पियो. सेक्शन 7 इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 6 ऐं सेक्शन 8. हाणे मेन असांजो टॉपिक इहो आहे जेके इलीगल डिस्पोज़िशन खे वाइंड अप करनि था. सेक्शन 7 छा इंटीरियम रिलीफ, कंहिं बि माण्हूअ खे अगरि डिस्पोज़िस कयो वियो आहे, हाणे जज ऑन रिकॉर्ड ॾिसे थो जेको बि माण्हू आहे जेके डिस्पोज़िस कयो वियो आहे, हाणे टेम्परेरी रिलीफ ते, इंटीरियम रिलीफ ते जज साहिबु हुनखे छा कंदा, ऑडर करे उन साॻई माण्हूअ खे रीस्टोर करे छॾंदा उनखे पंहिंजी जॻह में वापसि. ऑडर करे त बाबा तव्हां हिन माण्हूअ खे हली पंहिंजी जॻह में रहण ॾियो, जेसिताईं केस कंप्लीटली डिसाइडिड थिए तेसिताईं हिन माण्हूअ खे हितां जॻह मां न कढो. ठीकु, अगरि मिसाल को ऑडर खे नथो तस्लीम करे, ऑडर खे तस्लीम नथो करे, त ऑनरेबल रीज़नेबल जस्टिफिकेशन सां या रीज़नेबल वे सां जे पुलिस जो तरीक़ो वठी करे उन साॻई माण्हू खे उन प्रॉपर्टी में वापसि रीस्टोर कराईंदा. सपोज़ हिकिड़ी फैमिली हलो हिनखे असां हीअं था सम्झूं, जंहिं रेंट जा केसिस हूंदा आहिनि, हिकिड़े माण्हू जो रेंट कंप्लीट थी वियो आहे, एग्रीमेंट कंप्लीट थी वियो आहे ऐं हुनखे 60 ॾींहं जो नोटिस मिली चुको आहे, पर स्टिल इज़ नॉट वेकिंग द प्रॉपर्टी. हाणे हुनखे चलो ठीकु आहे, कहिड़े बि तरीक़े सां ॿाहिरि कढी सघे थो, हाणे हे क्लेम थो करे साईं मुंहिंजो अञा मुआदो पूरो ई न थियो आहे, एग्रीमेंट पूरो न थियो आहे, हिननि मूंखे ज़बरदस्ती कढियो आहे. छोकी हे जेको कानून आहे लैंड ग्रेबर ताईं बि महदूद न आहे न, हिन में फोर्सफुल इवेक्शन बि
1: आहे.
0: हाल ई तव्हां हिनखे रिस्टोर कयो, हाल ई हिनखे पंहिंजे, छोकी लाज़मी हुननि जा ॿार आहिनि, बच्चा आहिनि, जो सामान काॾे खणी वेंदो, हाल ई तव्हां हिनखे वापसि पंहिंजो रिस्टोर कयो. अगरि साबित थिए थो पियो त हिननि तव्हांखे जबरन कढियो आहे त हुनखे पेनल्टी लॻंदी, अदरवाइज़ अगरि हुनजो जाइज़ हूंदो, सपोज़ जेको अक्यूस पर्सन आहे जंहिंजे लाइ कंप्लेन ऐंड केस दाख़िल कयो आहे, जज साहिबु हुनखे एज़ पर डायरेक्शन हुनखे पंहिंजी प्रॉपर्टी तो छा चवंदा आहिनि ऑडर करे हुनखे डायरेक्शन ॾींदा, बाबा तव्हां पंहिंजी प्रॉपर्टी खाली कयो ऐं जेको मेन माण्हू हुयो हुनखे हिन केस मां आज़ादु करे. साबित न करे बाबा, लॉ चए थो यू हैव टू डिसाइड द इलीगल डिस्पोज़िशन एक्ट या द केसिस रिलेटेड टू इलीगल डिस्पोज़िशन विद इन 60 डेज़.
1: ओके, 2 मंथ्स.
0: ॿी ॻाल्हि मां चई, वाहिद लॉ आहे जंहिंमें गुंजाइश ई न आहे एजरमेंट जी.
1: ओके,
0: अगरि एजरमेंट ॾियणी आहे त रेयरेस्ट केस, हिकिड़ी रेयर केस न, रेयरेस्ट केस में तव्हांखे एजरमेंट ॾियणी आहे, उहो बि अन माना अहिड़ो रीज़न ॾेई करे त जेको न टालजे सघिजे, जे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसिस हुजनि तॾहिं वञी करे, पर डे घणा, 7 ॾींहं. इंटीरियम रिलीफ छा थियो, इवेक्शन पोज़ीशन सां जेकी इवेक्शन थी, इंटीरियम रिलीफ रीस्टोर
1: कराए,
0: जीअं केस साबित थो थी वञे अगेंस्ट अक्यूस पर्सन, त हिननि असांखे इलीगल डिस्पोज़िस तरीक़े सां कढियो आहे, त अक्यूस खे त सज़ा मिलंदी, पेनल्टी अलॻि लॻंदी, फाइन अलॻि लॻंदो, कंपनसेशन अलॻि भरंदो. अगरि कंप्लेनेंट साबित न करे सघियो त कंप्लेनेंट खे 5 लख असांखे भरिणा पवंदा कंप्लेन
1: कहिड़ी बि कंडीशन में भरे थो
0: लॉ पंज लख ॾियणा आहिनि हुनखे हुन में लॉ में इहो वाज़े थियल आहे त पेनल्टी हुनखे जेकी ॾियणी आहे पंज लख त हिनखे इंजरी ॾियणी आई आहे त लाज़मी तव्हां हुनजे ख़िलाफ़ हिकिड़ो ग़लति फॉल्स फेरिविलिस वैक्सीशियस केस तव्हां दाख़िल कयो आहे हुनजे ख़िलाफ़ तव्हां हुनजी इज़त खे टार्निश कयो आहे ठीकु आहे छोकी हुनखे लैंड माफ़िया लैंड ग्रेबर जो तव्हां टेक था हणो कयो माण्हूअ खे

0: दैट इज द रीज़न की हुन जी इंजरी 5 लख सां बि कंपनसेट न थींदी छो की इज़त वॾी शइ हूंदी
1: आहे।
0: इहो सिर्फ़ सबक़
1: सिखण
0: ॾिसो न, हाणे सेक्शन 8 ई रिलाय हुन ते करे थो। जीअं हाणे केस थी वियो त हाणे जंहिंजी प्रॉपर्टी जंहिंजे नाले ते हूंदी, इट विल बी रीस्टोर टू दैट पर्सन।
1: All right. Sir, to conclude the program, topic ke agar asa conclude kyun, aakhir mein ekdo sawal aaye jeko mukhe screen te bhi aayo hai, ekne 3-4 janan mokliyo jeko musalsal mare sando pyo ra, ta je kare yo agar illegal dispossess the pai ke property te, ta o jeko maanu ha unake kedo legal step vathan gurje fauri taur te
0: budhayo sin sabkha pehro police de complaint dakhil kare,
1: pehra police
0: SSP complaint cell te vanni online complaint dakhil kare chhedun je receiving vathe वरी कंसर्न हद जे एस एच ओ
1: ऑनलाइन कंप्लेंट भी करे सघे थो,
0: ऑनलाइन कंप्लेंट करे सघे थो, प्लस में छो 24 आवर्स में वरी उन ते अमल भी त थियणो आहे न। ठीक आहे, उन खां पोइ कंसर्न हद जे एस एच ओ ॾे वञी करे रिटन में एप्लीकेशन ॾेई सघे थो, भई मूंसां हे माण्हुनि ज़ुल्म करे छॾियो आहे, मूंखे घर मां बेदख़ल करे, मुंहिंजा ॿार रोड ते आहिनि, मां काॾे वञा, सपोज़ अगरि उहो रियल बेसिस ते आहे। ठीकु आहे, देन उहा कंप्लेंट खणी करे हे सेशन कोर्ट ईंदा, जेके असां डायरेक्ट कंप्लेंट चवंदा आहियूं, पंहिंजे कंहिं बि काउंसिल जे थ्रू उहो डायरेक्ट कंप्लेंट दाखिल करे उनजे ख़िलाफ़ हिकिड़ो ट्रायल इनिशिएट कराए सघनि था पिया।
1: All right. So, शहबाज़ साहब अवां जी
0: महिरबानी, हिकिड़ो ॿियो कंक्लूड कंदुमि त 8A में हिन जी अपील आहे। अगरि सपोज़ को माण्हू सम्झे थो मूंखे ग़लति तरीक़े सां कढियो वियो आहे ऐं मुंहिंजे लाइ ख़िलाफ़ु जेको आहे न डिसीशन आयो आहे, मूंखे कन्वेंशन लॻी आहे, कन्वेक्शन लॻी आहे, मूंखे सज़ा लॻी आहे, अगरि कोई कंप्लेनेंट सम्झे थो जेके अक्यूज़ पर्सन उहे ग़लति तरीक़े सां अक्यूट थी विया आहिनि, मुंहिंजो केस जाइज़ हुयो, ग़लति तरीक़े सां न चइजे माना कहिड़े बि तरीक़े सां, ए बी सी डी या लेक ऑफ एविडेंस जे करे मुंहिंजो जेको अक्यूज़ पर्सन आहे उहो ग़लति तरीक़े सां या वरी उहो लफ़्ज़ छो की असां हैबिट आदि थी विया लफ़्ज़ जा, त माना उहो कहिड़ी बि वे सां लेक ऑफ एविडेंस जे करे उहो अक्यूट थी वियो आहे, त सेक्शन 8A असांखे अपील जो मौक़ो थो ॾिए त विद इन 30 days में अगरि कंहिंखे कन्वेक्शन लॻी आहे त 30 days में पंहिंजो अपील दाख़िल करे हाई कोर्ट
1: में,
0: अगरि को अक्यूट थी वियो आहे त कंप्लेनन खे 30 days में जेको आहे ख़िलाफ़ु रिविजन दाख़िल करणी पवंदी। सो इहो असांखे जेको आहे न लॉ पूरो जो पूरो प्रोसीजर ॾिए थो पियो त इलीगल इन स्पेसिफिक केसिस खे कीअं डील कजे अपार्ट फ्रॉम द सिविल प्रोसीजर कोड ऐं जेको आहे न में जेके रेगुलर मैजिस्ट्रेट ट्रायल आहिनि सेशन ट्रायल खां हटी करे इन जे लाइ इहो लॉ क्रिएट कयो वियो।
1: ऐं सर इन शॉर्ट लास्ट में वरी तव्हां रिवाइज़ इहो असांखे ॿुधाईंदा त सज़ा 10 years ताईं थी सघे थी,
0: एक्सटेंडिड
1: आहे, ओके,
0: इट इज़ एक्सटेंडिड, इंटेंसिटी डिपेंड करे थो केतिरी केतिरो माना हुनजी इंटेंसिटी आहे क्राइम जी, छोकी ॾिसो न जेतिरी वधीक इंटेंसिटी सज़ा ओतिरी वधीक डिपेंड, ईअं न जज 3 years बि सज़ा ॾेई सघे थो, 5 years बि ॾेई सघे थो, 7 बि ॾेई सघे, एक्सटेंडिड 10 years पेनल्टी आहे हुन ते, सज़ा लॻंदी हुनखे, लॻंदी 544A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।
1: ऑल राइट, सो लिसनर्स प्रोग्राम जो वक़्तु बि पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो आहे, जो असांजो टॉपिक इलीगल डिस्पोज़िशन जे ते शहबाज़ साहब सुठे तरीक़े सां
0: कोशिश कई हूंदी पंहिंजे जेके न सुठे खां सुठो ब्रीफ कयो, सुठे खां सुठो असां हुनखे गाइड कयो हुजे,
1: असांखे इंफॉर्मेशन ॾिनी, उम्मीद आहे अॼु जो असांजो प्रोग्राम तव्हांजे लाइ तमामु घणो इंफॉर्मेटिव थियो हूंदो ऐं गॾो गॾु वधीक तव्हांखे लीगल कंसल्टेशन अगरि घुरिजे शहबाज़ साहब खां त तव्हां हुननि जो नंबर नोट करे सघो था, रिक्वेस्ट कंदुसि शहबाज़ साहब खे त नंबर ॾियणु चाहिनि तव्हां
0: वॾी महिरबानी, ऐं मां फीडबैक जो बि वेट कंदुमि
1: जी,
0: फीडबैक असांजे लाइ नेसेसरी आहे, इंपोर्टेंट आहे, छोकी फीडबैक असांखे मोटिवेशन ॾींदो आहे अञा पंहिंजे पाण खे फाइन खां फाइन करण जो,
1: बिल्कुलु ईअं आहे।
0: ठीकु आहे, त मां मोटिवेशन पंहिंजो फीडबैक जो बि वेट कंदुमि ऐं बाबर थैंक यू वेरी मच
1: के तव्हां
0: नंबर लाइ चयो मूंखे, अगरि कंहिंखे ज़रूरत हुजे मूंसां कॉन्टेक्ट करे सघनि था 0308-12-44-306, रिपीटिंग वंस अगेन 0308-12-44-306।
1: सो लिसनर्स प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, नेक्स्ट प्रोग्राम में वरी नए मौज़ू सां गॾु अव्हां सां मुलाक़ात थींदी, तेसीं ताईं अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैरु।

0: szent kiavász.
1: तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठाण चाहो था जिते हो जे तहफुस जदीद सहूलतों आई मंजूर थियल सिक्योरिटी
2: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
1: सखर शिकारपुर रोड ते
2: डॉक्टर जियाउद
3: ये जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करयो जी हां हाने अमा जे पैंजे शहर सखर में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब HMS Sindh, RHMP Pakistan, General Physician, Mahir Amraz, Medo and Jigar Ji Garmash, Gurdeji Patri, Ainsoj, Purani Khang, Zukam, Dilji Taklif, Ad Mathe Josur, Akinji Kharish, Jordan Josur, Bukhar, Baran Jodel Sahalan, Falej, Sugar, Dimagi Kamzori, Kharish, Nasur, Khuni Badi Bawasir, and in Sublin Bimaran Jo Kamyab Ilaj Kayovidwahi, Homeopathic Doctor, Harish Javed Rajputsa, Time, Rosano, Subunai Vagekasha, Chai Vagetai, Paro Jumu, Bare Vagetai. एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327 89 84 763
4: सिंध के माथे का झूमर
5: जी एफएम 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 6:15 PM.
4: This time check is brought to you by
5: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मुझे मकसद है कानून लागू कदड़ इदारा मुल्क की अमुन लाए डी रात कम कर रहा है। संदन खिदमतुन कुर्बानी जो एतराफ़ एहतराम थियन घुर्जे।

अपोजिशन जी बि हुकूमत खे गॾिजी मामलनि खे अॻिते वधाइण जी आछ। क़ौमी असेंबली में बजेट ते ॻाल्हाईंदे महमूद ख़ान अचकज़ई जो चवणु हो त ग़लतियुनि खे सुधारे सघिजे थो। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट खे मज़बूत करे हिकु मुआदो करे त जीअं सियासी जमायतूं हिक ॿिए जूं टंगू न छिकनि। फेडरेशन सूबनि खे पैसा ॾींदी आहे, अवां सूबनि खां वरिता आहिनि। पीटीआई बानीअ ते एतिरी सख़्ती न कयो, हिक ॿिए खे जेलनि में विझण सां कुझु न थींदो। पीटीआई बानीअ सां मुलाक़ात थींदे छा थींदो?

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ ईरान अमेरिका अमन मुआहिदो 24 कलाकनि में फाइनल थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त ईरान अमेरिका अमन मुआहिदे जा नुक़्ता 24 कलाकनि में फाइनल थी वेंदा। ईरान अमेरिका अमन मुआहिदे लाइ अॻु खां वधीक वेझो पहुची चुका आहियूं। ईरान ऐं अमेरिका विच में ईंदड़ हफ़्ते टेक्निकल सतह ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं। पाकिस्तान ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुआहिदे डिजिटल सयुनि लाइ तयारियूं करे पियो। पूरो यकीन आहे त मुआहिदो ख़िते में जटादार अमन जो मज़बूत बुनियादु बणिजे थो।

ईरान अमरीका सां शुरूआती मुआहिदे ते इतफ़ाक थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास राखची जो चवणु आहे त अमरीका सां ॾींहं ॿिनि में मुआहिदो थी सघे थो। मुआहिदे ते सयूं डिजिटली कयूं वेंदियूं। असांजी तलवार हमेशह जीअं आबनाए हुरमस ते लटकंदी रहंदी। ॿिनि सुफ़न ते ॿधल मफ़ामती यादाश्त आहे जंहिं ते ॿिनि महीननि ताईं ॻाल्हियूं थींदियूं रहियूं आहिनि। आबनाए हुरमस जो इंतिज़ाम माज़ीअ खां मुख़्तलिफ़ हूंदो, जंहिं बाबति तहरान जो फ़ैसिलो हतमी आहे।

0: सूबनि पारां मर्कज़ जी मदद करण ते थोरायत आहियूं। इहा सहूलियत ईंदड़ 3 सालनि ताईं जारी रहंदी। हाणे तरक़ियाती मनसूबनि लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तरफ़ वञणो पवंदो। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत सुठो कमु करे ॾेखारियो आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाणे वारे वज़ीर जो चवणु हो त बजट में 70 अरब रुपियनि जी वाधू सब्सिडी ऐं पघारदार तबिके खे रिलीफ ॾिनो आहे। ज़रई मशीनरी तां कस्टम ड्यूटी लागू कई आहे। तामीराती शोबे तां बि टैक्स घटाया आहिनि। वफ़ाक़ी बजट पघारदार तबिके सनअतकारनि ऐं एक्सपोर्टर्स लाइ आहे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाणे वारे ममलकती वज़ीर बिलाल अज़र कयानी जो चवणु हो त समूरनि शोबनि तां भार घटाइण जी कोशिश कई आहे। हीअ बजट पंहिंजो घर ठाहींदड़नि जी बजट आहे। घटि पघार खणंदड़ तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो, हिन भेरे बि रिलीफ ॾिनो आहे। वापारियुनि, एक्सपोर्टर ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज़ तां बि टैक्स घटायो आहे। बजट सां सनअतुनि खे हथी मिलण सां गॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानीअ सां मुलाक़ात कराइण जो मुतालबो। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो त सियासी इस्तेहकाम सां ई मुआशी इस्तेहकाम ईंदो। बजट में ग़रीबनि लाइ कुझु बि नाहे। न बिजलीअ जी क़ीमत घटि थी, न ई वरी लोड शेडिंग ते फ़र्क़ु पियो, न ॿियो कुझु सस्तो थींदो।
1: मैं तो खत्म करा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाए आप।

0: इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है, बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहां खड़ा हूं या मैं यहां आना चाहता हूं। साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम स्पीकर साहब है।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जहाँ अपोजिशन मेंबर्स की आवाज़न से दिलचस्प जुमला सनावला मस्ती खेल के वापस अचन की भी दावत दे छी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की बिसारा अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई के भी दोस्त करार दिनों। शहबाज शरीफ जो चवण हो तो सनावला मस्ती खेल वापस अचन चाहे तो पर कुछ मसला अथस। एफबीआर मां सिफारशी कल्चर के खत्म कर छो है। एफबीआर में अरबे रुपये की करप्शन हुई, रुगो शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपये जो घपलो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हासिल करियो जी हाँ, हाँ अवाजे पेंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अद मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर से हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। अधिक मशवरे और राबते के लिए 0327 99

हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सूबनि पारां मर्कज़ जी मदद करण ते थोरायता आहियूं। इहा सहूलियत ईंदड़ टिनि सालनि ताईं जारी रहंदी। हाणे तरक़ियाती मनसूबनि लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तर्फ़ वञणो पवंदो। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत सुठो कमु करे ॾेखारियो आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाणे वारे वज़ीर जो वधीक चवणो हो त बजट में 70 अरब रुपियनि जी वाधू सब्सिडी ऐं पघारदार तबिके खे रिलीफ ॾिनो आहे। ज़री मशीनरी तां कस्टम ड्यूटी ख़तमु कई। तामीराती शोबे तांबे टैक्स घटाया आहिनि।

वफाकी बजट पगारदार तबके सनतकारन ऐं एक्सपोर्टर्स लाइ आहे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाणे वारे ममलकती वज़ीर बिलाल अज़र कयानी जो चवणो हो त समूरनि शोबनि तां भार घटाइण जी कोशिश कई आहे। हीअ बजट पंहिंजो घर ठाहींदड़ जी बजट आहे। घटि पघार खणंदड़नि तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो, हिन भेरे बि रिलीफ ॾिनो आहे। वापारनि एक्सपोर्टर ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज़ तां बि टैक्स घटायो वियो आहे। बजट सां सनतुनि खे हथी मिलण सां गॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा।

पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई बानी से मुलाकात कराने जो मुतालबो कौमी असेंबली में गालंदे बैरिस्टर गोहर चयो तो सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम ही दो बजट में गरीबन लाए कुछ भी ना है न बिजली की कीमत घट थी नई वरी लोड शेडिंग से फर्क पयो है न बियो कुछ सस्तो थिंदो

จะมาอารมณ์นะมาอารมณ์मैं तो खत्म करा दूंगा आप भी आ जाए ना अपने घर आ जाए आप।

0: मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है, बहुत भाई वाला ताल्लुक है। इशारों इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मेरे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम स्पीकर साहब।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ अजा अपोजिशन मेंबर्स की आवाजन ते दिलचस्प जुमला, सनाउला मस्ती खेल के वापस अचण की भी दावत दई छी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की बिसारा, अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई के बे दोस्त करार दिनो। शहबाज शरीफ जो चवण हो तो सनाउला मस्ती खेल वापस अचण चाहे तो पर कुछ मसला अथस। एफबीआर मां सिफारशी कल्चर के खत्म कर छो है। एफबीआर में अरबें रुपयन की करप्शन हुई, रुगो शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपयन जो घपलो हो। सुद समा वाले फकी वजीर अता तारण पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो है तो पघारदार शख्स शुगर इंडस्ट्री जो बार छो खणे। सुधारा करे खंड की सनत में टैक्स चुरो के 60 अरब टैक्स हासिल कयो। माजी में मुल्की डिफॉल्ट ते शर्तू लगी हुई, मौजूदा हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम आंदो जेको अगते वधी रहयो आहे।

13,000 अरब टैक्स मां 1,100 अरब रुपया रुगो कराचीअ मां गॾु थींदा आहिनि। कराचीअ जी रस्तनि जी हालत ख़राब आहे। 8 सालनि खां सिंध ते करप्ट हुकूमत क़ाइमु आहे। क़ौमी असेंबली में बजट ते ॻाल्हाईंदे MQM अॻवान फारूक सतार जो चवणु हो त वज़ीर आज़म जी तक़रीर में कराचीअ जो ज़िक्र ई नाहे। शहरनि खे सिधीअ रीत फंड ॾिना वञनि। 2100 अरब सिंध खे ॾिना पिया वञनि। पैसा सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जे मेयर्स खे ॾिना वञनि। 26वीं ऐं 28वीं तरमीम खे सपोर्ट कयो। असांजी वारे ते रेड लाइन अची वई। मकानी इदारनि खे ख़ुदि मुख़्तियार बणाइणो पियो। रुगो कराची न पर समूरनि शहरनि खे सिधीअ रीत फंड ॾिना वञनि। सिक्योरिटी फोर्सिस जो उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन वधीक 21 दहशतगर्द मारिजी विया। 3 ॾींहनि दौरान फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 48 थी वियो। ISPR मौजूदु सिक्योरिटी फोर्सिस गुजे इतला ते मीरा शाह ऐं भरपासे में ऑपरेशन कया, जंहिं दौरान वधीक 21 दहशतगर्द मारिजी विया। 72 कलाकनि दौरान ऑपरेशन जे नतीजे में दहशतगर्दनि जे 4 अहम कमांडर समेत 48 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। इलाइक़े में क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी रहंदो। सदर आसिफ़ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सिस जी

ईरान ऐं अमेरिका जे मुआहिदे ते पहुचण वारियुनि ख़बरुनि बाद आलमी मार्केट में तेल सस्तो थी वियो। बैरेंट तेल जे अघ में $3 ताईं जी लाथ, फी बैरल $87 थी वियो। अमरीकी कचो तेल बि सस्तो थी, फी बैरल $84.88 विकिरो थियण लॻो। आलमी मार्केट में तेल जूं क़ीमतूं तक़रीबन 3% ताईं घटियूं आहिनि।

0: करमपुर में केटीएन न्यूज जे रिपोर्टर जे घर ते धाड़ेलन जो हमलो संदस सौट कतल धाड़ेलन केटीएन न्यूज जे रिपोर्टर अली जाफरी जे घर ते हमलो करे संदस सौट शाहराज जाफरी के कतल कयो फायरिंग में रजब जाफरी जख्मी थी पयो पुलिस नोटिस न वरतो वधी करे तो छण जो खदशो में भाव था भेण कतल जुल्फकार कॉलोनी में जवाबदार दिलबर डेपर फायरिंग करे पंजी वडी भेण सफिया डेपर के कतल कयो लाश अस्पताल मुंतकिल
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हाँ हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763
3: It's 8:15 PM.
4: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
5: Har din, har peher. Zindagi ki lehar. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: Aloe Vera Fan. White Age Beauty Cream 5-Day Beauty Plan ke saath. Aloe Vera Vitamins aur Avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye, skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile, chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
1: हाणे हैरतन खे जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज़, मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
0: तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।